नमस्कार श्रोता साथियों, मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूँ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज वार रविवार, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारी भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा विशेष कार्यक्रम आराधना से। फिर हम आपको रूप कराएंगे महापुरुषों की प्रेम गाथा से। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी क्रम में अगला कार्यक्रम होगा श्रोता साथियों हमारा प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में। श्रोता साथियों, फिर आपको रूबरू कराएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर, जिसमें आप जानेंगे उनके जीवन परिचय को। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी कड़ी में श्रोता साथियों आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा गांधी जी से जुड़ा विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। श्रोता साथियों, फिर हम रुक करेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे नए नए व्यंजनों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। श्रोता साथियों, जैसा कि आपको मैं कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बताई रही हूँ, तो इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। श्रोता साथियों, फिर 10 से 1 बजे तक होगी मनोरंजन की पूरी भरमार फिल्म संगीत लोक संगीत के साथ में, जिसमें आप सुन पाएंगे नए पुराने फिल्मी संगीत और हमारी लोक परंपराओं से जुड़े राजस्थानी गीतों को। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते?

0: माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, कैसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जहाँ सेवा है वहाँ सच्ची पूजा है, और जहाँ मानवता है वहीं से शुरू होती है महानता की असली गाथा।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।

0: इस गीत के बाद हमारे श्रोता साथियों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। श्रोता साथियों, यह वो मंच है जहां हम उन महान व्यक्तियों की कहानी को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन से प्रेम, सेवा, सादगी और मानवता का संदेश दिया। जागृति जी, आज हम बात करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से इंसान में बसते उस भगवान की, जिन्होंने कहा कि सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जिन्होंने प्रेम को ही सबसे बड़ी पूंजी माना। आज हमारा कार्यक्रम का विषय है रामकृष्ण परमहंस के जीवन परिचय को लेकर।
0: जी हाँ अंजलि, भारत की पवित्र धरती पर अनेक संतों, महापुरुषों और आध्यात्मिक गुरुओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने विचारों और जीवन से समाज को नई दिशा दी।
1: बिल्कुल।
0: उन्हीं महान संतों में एक

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से रामकृष्ण परमहंस की जो मुलाकात है वो स्वामी विवेकानंद से हुई थी, यही बात करें तो श्रोता साथियों, रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है।
1: बिल्कुल,
0: वे लोगों को प्रेम, करुणा और सादगी का जीवन अपनाने की प्रेरणा देते थे। उनके अनुसार जागृति जी, यदि मन साफ हो तो हर काम पूजा बन जाता है। ये कभी दिखावा नहीं करते। उनका जीवन बहुत सरल था। उन्होंने सिखाया कि बड़ा बनने के लिए धन नहीं बल्कि अच्छा हृदय चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि, रामकृष्ण परमहंस का जीवन बहुत ही सरल था। वे दिखावे और धन दौलत से बहुत दूर थे। उनका मानना था कि मनुष्य को अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना होगा।
0: बिल्कुल,
1: वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनके विचारों में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं था। वे कहते थे कि मनुष्य जितना विनम्र होगा उतना ही ईश्वर के करीब पहुंचेगा।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, मानसिक शांति को खोते जा रहे हैं। ऐसे समय में रामकृष्ण परमहंस का सादा जीवन हमें सच्ची खुशी का अर्थ समझाता है।
0: जी जी,
1: यही अगर समाज पर प्रभाव को लेकर हम बात करें तो अंजलि, रामकृष्ण परमहंस ने अपने उपदेशों से समाज में नई चेतना जगाई थी। उन्होंने लोगों को प्रेम, सहानुभूति और सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी थी, जैसा कि आपने बताया था।
0: बिल्कुल,
1: उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोगों ने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया। उनके शिष्यों ने आगे चलकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: बिल्कुल,
1: आज भी संस्था गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता कर रही है। श्रोताओं, रामकृष्ण परमहंस का जीवन ये बताता है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने अच्छे कर्मों और विचारों से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज के युवाओं के लिए रामकृष्ण परमहंस का जीवन बहुत प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल,
0: वे सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई जरूरी है, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मन की शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर मिलती है। रामकृष्ण परमहंस ने अपना पूरा जीवन लोगों को प्रेम और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने में लगा दिया। 1886 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनकी शिक्षा आज भी

0: उतनी ही जीवित है श्रोता साथियों जितनी उस समय थी। कहना चाहेंगे कि रामकृष्ण परमहंस केवल एक संत नहीं थे बल्कि प्रेम सहिष्णुता और मानवता की जीवित मिसाल थे। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म का असली अर्थ इंसान को इंसान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी सेवा भाव शामिल कर लें तो हमारा समाज बहुत सुंदर बन सकता है। याद रखिए कि बड़े मंदिर बनाने से पहले अपने मन को पवित्र बनाना जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: और शायद यही रामकृष्ण परमहंस के जीवन का सबसे बड़ा संदेश था।
1: बिल्कुल अंजलि, जीवन के अंतिम वर्षों में रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित हो गए। बीमारी के बावजूद उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा। वे हमेशा ईश्वर के ध्यान और मानव सेवा की बात करते रहे। 16 अगस्त 1886 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। श्रोताओं, कहा गया है कि महापुरुष शरीर से जाते हैं लेकिन उनके विचार अमर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह रामकृष्ण परमहंस का जीवन प्रेम, भक्ति, सादगी और मानवता की अनमोल मिसाल है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े से बड़े कर्मकांड नहीं बल्कि सच्चा मन और सेवा भाव होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने सभी धर्मों को समान माना और मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में उनके विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चले तो समाज में प्रेम, शांति और भाईचारा स्थापित हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, सेवा और विनम्रता को अपने जीवन में अपनाना होगा श्रोताओं, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर मंदिरों में ही नहीं हर इंसान के दिल में बसता है। जो मानवता की सेवा करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हर युग में कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ही संत थे जिन्होंने प्रेम को पूजा और मानवता का सबसे बड़ा धर्म बताया।
1: बिल्कुल।
0: हम भी अपने जीवन में श्रोता साथियों ये संकल्प ले सकते हैं कि किसी के प्रति नफरत नहीं रखेंगे, जरूरतमंद की मदद करेंगे, रिश्तों में अपनापन बढ़ाएंगे और इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि यही वह रास्ता है जो समाज को बेहतर और जीवन को सुंदर बनाता है।
1: जी हाँ।
0: अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मंदिरों में भगवान खोजने से पहले यदि हम इंसान के दिल को समझ ले तो शायद वही ईश्वर हमें मिल जाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में रामकृष्ण परमहंस को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक महान पुरुष के जीवन परिचय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

भाई बोनो, घर तक के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी है उन बुजुर्गों की जिनके बिना घर सिर्फ मकान बनकर रह जाता है। कहानी का शीर्षक है बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, अगर वही हाथ बुढ़ापे में कांपने लगे तो हमारा फर्ज क्या बनता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहानी का शीर्षक बताया था कि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है। कहते हैं दोस्तों, पेड़ चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसकी छाया हमेशा सुकून देती है। ठीक वैसे ही हमारे बुजुर्ग भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आइए दोस्तों, सुनाती हूँ कहानी। कहानी का शीर्षक है बुजुर्गों का सम्मान। दोस्तों, गांव के किनारे एक छोटा सा घर, उस घर में दादाजी राम प्रसाद, उनका बेटा महेश, बहू सुनीता और पोता आरव रहते थे। कभी यही घर हंसी खुशियों और अपनापन से भरा रहता था, लेकिन समय बदलने लगा। जैसे जैसे महेश की नौकरी शहर में अच्छी होती गई, वैसे वैसे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। राम प्रसाद जी अब बूढ़े हो चुके थे, हाथ कांपते थे, आंखें धुंध

नहीं हो गई थी और चलने के लिए लाठी का सहारा लेना था, मगर दिल अभी भी वैसा ही था, अपने परिवार के लिए प्यार से भरा हुआ। दोस्तों, हर सुबह वे जल्दी उठते, आंगन में बैठकर भगवान का नाम लेते और अपने पोते आरव को स्कूल जाते हुए आशीर्वाद देते। आरव उनसे बहुत प्यार करता था, वो रोज दादाजी से कहानियां सुनता और उनकी गोद में सिर रखकर सो जाता। लेकिन महेश को अब ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि बूढ़े पिता अब सिर्फ जिम्मेदारी बन चुके हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय महेश बहुत परेशान था। कंपनी में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। घर आते ही उसने देखा कि दादाजी गलती से पानी का गिलास गिरा बैठे हैं। महेश गुस्से में चिल्लाया, पिताजी आपसे एक गिलास भी संभाला नहीं जाता, हर दिन कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देते हैं। दादाजी चुप रहे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुनीता भी बोली, अब इनकी देखभाल करना मुश्किल हो गया है। ये सब सुनकर आरव को बहुत दुख हुआ। दोस्तों, उसने पहली बार अपने दादाजी को इतना टूटा हुआ देखा था। उस रात दादाजी खाना भी ठीक से नहीं खा पाए। वे अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गए, दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखते रहे। उन तस्वीरों में महेश छोटा बच्चा था, जिसे उन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल पहुंचाया था। रामप्रसाद जी को याद आया कि कैसे उन्होंने खेत बेचकर बेटे को पढ़ाया था। खुद फटे कपड़े पहन लेते थे, लेकिन बेटे की फीस कभी रुकने नहीं दी उन्होंने। कई रातें भूखे भी सो गए, मगर बेटे के सपनों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा था। दोस्तों, अगले दिन गांव में एक कार्यक्रम था, स्कूल में बुजुर्गों का सम्मान विषय पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी। आरव भी उसमें हिस्सा लेने वाला था। जब उसकी बारी आई, वो मंच पर गया। उसकी आंखें नम थी। दोस्तों, उसने बोलना शुरू किया, बुजुर्ग पेड़ की उस छाया की तरह होते हैं जो खुद धूप सहकर हमें ठंडक देते हैं। माँ बाप और दादा दादी अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा देते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तब कई लोग उन्हें बोझ समझने लगते हैं। क्या यही इंसानियत है? पूरा हॉल शांत हो गया। दोस्तों, आरव आगे बोला, मेरे दादाजी ने मेरे पापा को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। उन्होंने अपना जीवन त्याग में बिताया, लेकिन आज उन्हें सम्मान की जगह ताने मिलते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमेशा हमसे क्या सीखेगी? दोस्तों, महेश भी वहाँ बैठे थे, यानी कि आरव के पिता भी वहीं बैठे थे। हर शब्द उनके दिल पर चोट कर रहा था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत होती है वहाँ भगवान का वास होता है, और जिस घर में बुजुर्ग रोते हैं वहाँ सुख कभी नहीं टिकता। इतना कहकर आरव रो पड़ा। श्रोताओं, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन महेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। उस रात महेश घर लौटा तो उसने पहली बार अपने पिता के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। रामप्रसाद जी खिड़की के पास बैठे आसमान देख रहे थे। महेश उनके पास जाकर घुटनों पर बैठ गया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मेहनत और त्याग भूल गया था। श्रोताओं, रामप्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, माँ बाप बच्चों से नाराज नहीं रहते, बस इतना चाहते हैं कि बच्चे उन्हें प्यार दें, सम्मान दें। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। दोस्तों, महेश अब रोज अपने पिता के साथ समय बिताने लगा। वो उन्हें पार्क ले जाता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता और हर छोटी छोटी बातों में उनका सम्मान करता। धीरे धीरे घर में खुशियां लौटने लगी। एक दिन दादाजी ने आरव से कहा, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है वही जिंदगी में सच में बड़ा बनता है। आरव मुस्कुराया और बोला, दादाजी, मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। समय बीतता गया। कुछ साल बाद आरव बड़ा अधिकारी बन गया। लोग उसकी सफलता की तारीफ करते थे, लेकिन जब भी कोई उसकी सफलता का राज पूछता वह एक ही बात कहता, मैंने अपने दादाजी से सीखा है कि जिंदगी में बड़ा बनने से पहले इंसान बनना बहुत जरूरी है। उसने अपने घर के बाहर एक पंक्ति लिखवाई थी, जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं उस घर में खुशियाँ कभी कम नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि बुजुर्ग हमारे अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का खजाना होते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित किया होता है, इसलिए उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारी इंसानियत की पहचान भी है। कहा गया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं, परिवार की नींव है, और जो अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करता है जीवन उसे सम्मान लौटाता है। आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि
अगर घर में बुजुर्ग है तो समझ लीजिए घर में दुआएं अभी बाकी है, उनका सम्मान कीजिए क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ तस्वीरें और यादें रह जाती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी बुजुर्गों का सम्मान। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रहेंगी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी, कहानी का शीर्षक था बुजुर्गों का सम्मान। आपसे ये कहना चाहेंगे दोस्तों इस कहानी के माध्यम से कि समय बहुत तेज चलता है। आज जो हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद रख रहे हैं, कल शायद सिर्फ यादों में रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि बुजुर्ग हमारे जीवन की वो अमूल्य धरोहर हैं, जिनके अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद से परिवार मजबूत बनता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे सुख, शिक्षा और भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। जब हम छोटे थे तब उन्होंने हमें संभाला था, चलना सिखाया था, गिरने पर उठाया और हर मुश्किलों में हमारा साथ दिया। इसलिए जब वे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सहारे और सम्मान की जरूरत होती है, तब उनका साथ देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। दोस्तों, आज आधुनिकता और भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने बुजुर्गों को अकेला छोड़ देते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आकर बस जाती है। बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते दोस्तों, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के सच्चे संरक्षक होते हैं। हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार के लिए बोझ नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि धन दौलत तो समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों की दुआएं इंसान को जीवन भर संभाल कर रखती हैं। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों कि जिस घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं, उस घर में खुशियां कभी कम नहीं होती। अब आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि घर की असली रौनक महंगे सामान में नहीं बल्कि बुजुर्गों की मुस्कान में होती है। इन्हीं चंद पंक्तियों और इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे श्रोता साथियों, और आपसे भी उम्मीद यही करते हैं कि आप भी अपने घर में बुजुर्ग होंगे तो उनका सम्मान आरव की तरह ही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। जाने से पहले आपको पता बताना चाहेंगे ताकि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी मैं हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानी आपको सुनवाती हूँ, जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी सीख देती है। और इन कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ अलग बातों को सीख पाते हैं। तो आज भी मैं कार्यक्रम में कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरू में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज भी मैं आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। आज हमारी कहानी का शीर्षक है आखिरी रोटी। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले एक छोटे से गाँव में एक गरीब माँ और उसका छोटा बेटा रहते थे जिसका नाम था गोपाल। उनका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और रसोई में अक्सर खाली बर्तन ही दिखते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। पूरा दिन बीत गया था लेकिन घर में खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। माँ ने रोटी को हाथ में लिया और गहरी सांस ली। माँ ने रोटी गोपाल को देते हुए कहा, बेटा तुम खा लो, तुम छोटे हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। गोपाल ने रोटी को देखा, फिर माँ की ओर देखा। माँ आपने कुछ खाया, उसने पूछा। माँ मुस्कुरा दी, मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। गोपाल समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। वह रोटी लेकर बाहर चला गया। वह सोच रहा था, अगर मैं खा लूं तो माँ भूखी रहेगी और माँ खा ले तो मैं भूखा रहूंगा। बच्चों, उसके छोटे से दिल में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत कमजोर था, कांप रहा था और उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना है? गोपाल के हाथ में वही आखिरी रोटी थी। गोपाल कुछ पल चुप रहा। बच्चों, उसने सोचा कि अगर मैं ये रोटी दे दूं तो माँ और मैं दोनों भूखे रह जाएंगे। फिर उसने बूढ़े आदमी की हालत देखी और बिना कुछ बोले वह रोटी उसके हाथ में रख दी। गोपाल घर लौटा। माँ ने पूछा, रोटी खा ली? गोपाल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उस रात दोनों भूखे सो गए, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत सारे अनाज के बोरे रखे थे। माँ हैरान रह गई, यह सब कहाँ से आया? तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी किसी भूखे को दे दी, इससे बड़ा दिल कोई नहीं रख सकता। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उन्हें अनाज मिल गया, सबसे बड़ी बात यह थी उन्होंने दूसरों के लिए जीना सीख लिया था। तो बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि सच्ची इंसानियत वही है जब हम अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत देखें। छोटा त्याग भी जीवन बदल सकता है और दिल से किया गया अच्छा काम कभी बेकार नहीं होता। बच्चों, अक्सर हमारे जीवन में भी बहुत सी बार ऐसा होता है, हम पहले खुद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। बहुत सी बार हम अपने माता पिता को लेकर भी खुद स्वार्थी हो जाते हैं। पहले हम अपने बारे में सोचते हैं और फिर माता पिता के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी इंसान हो, सबसे पहले दूसरों की मदद करनी है, फिर हमारी खुद की मदद करनी है। जैसा कि गोपाल के पास एक ही रोटी थी, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े आदमी की भूख को कम करने के लिए वो रोटी उसे दे दी। तो इस तरीके से बच्चों, हमें ये कहानी बहुत ही प्यारी सी सीख देती है। इस कहानी की गहराई यही है कि जब आपके पास कुछ भी न हो, तब भी आप देने का हौसला रखें, वहीं से इंसान महान बनता है। तो बच्चों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। आगे एक और प्यारी सी कहानी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी, यही अब हमारी अगली कहानी है, बूढ़ा कुम्हार और अधूरी मिट्टी। जी हाँ बच्चों, एक शांत गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसके हाथों में जादू था, मिट्टी के ऐसे घड़े बनाता कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसका एक बेटा था रवि। रवि तेज था लेकिन धैर्य नहीं था। एक दिन हरिदास चाक चला रहा था। रवि बोला, बाबा ये सब पुराना तरीका है, मैं जल्दी जल्दी घड़े बनाना चाहता हूँ। हरिदास मुस्कुराया, जल्दी में बनाई चीज टिकती नहीं है बेटा। रवि हंस पड़ा, आज के जमाने में तेज चलना पड़ता है बाबा। रवि ने खुद चाक संभाल लिया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी उगाई, पानी मिलाया और घड़ा बनाने लगा। कुछ ही देर में घड़ा बन गया। रवि खुश होकर बोला, देखा बाबा, आपने पूरा दिन लगाया, मैंने आधे घंटे में बना।

हरिदास ने घड़े को ध्यान से देखा, फिर धीरे से पूछा, इसमें ठहराव कहाँ है रवि? रवि चिढ़ गया, आप हर चीज में क्यों कमी ढूंढते हो? अगले दिन रवि अपने बनाए घड़े बाजार ले गया। एक ग्राहक ने घड़ा उठाया, कितने का है? रवि बोला 50 रुपए। ग्राहक ने घड़े को थपथपाया और अचानक ठक, घड़ा बीच से फट गया। ग्राहक गुस्से में, ये क्या मजाक है बच्चों? रवि शर्मिंदा हो गया। रवि घर लौटा, हरिदास ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने गुस्से में कहा, लोग ही बेकार हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। हरिदास शांत स्वर में बोला, लोग नहीं, घड़ा अधूरा था। रवि चुप हो गया। उस रात रवि धीरे से बोला, बाबा क्या सच में मैं गलत हूँ? रविदास ने उसकी ओर देखा और कहा कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे मानना और सीखना जरूरी है। बच्चों रवि की आंखें झुक गई। उसने पिता से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? हरिदास ने मिट्टी उगाई और कहा, देखो बेटा, मिट्टी को समझना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है, जल्दी करोगे तो वह टूट जाएगी। रवि यह सब बातें ध्यान से सुन रहा था। और इंसान भी मिट्टी की तरह ही होता है, हरिदास बोला, अगर खुद को समय नहीं दोगे तो तुम भी अंदर से टूट जाओगे। बच्चों फिर होती है नई शुरुआत। अगले दिन रवि फिर चाक के पास आया। इस बार उसने धीरे धीरे मिट्टी उठाई। हरिदास ने पूछा, आज जल्दी नहीं है? रवि हल्का मुस्कुराया, आज सीखना है, बनाना नहीं। दिन बीतते गए, रवि अब हर घड़ा ध्यान से बनाता। कभी घड़ा बिगड़ जाता तो गुस्सा नहीं करता, वह खुद से कहता, अब मैं सीख रहा हूँ। कुछ महीनों बाद बच्चों रवि ने घड़ा बनाया। हरिदास ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में चमक आई। अब इसमें जान है बेटा, रवि ने पूछा, सच में? हरिदास ने कहा, अब तुम सिर्फ घड़ा नहीं, अपना धैर्य बना रहे हो बेटा। रवि फिर बाजार गया और वही ग्राहक मिला। उसने फिर पूछा, कितने का है? रवि ने कहा, पहले देखिए। ग्राहक ने घड़ा उठाया, थपथपाया, इस बार घड़ा मजबूत था। वो मुस्कुराया, अब बात बनी है। रवि घर लौटा, बाबा इस बार सब घड़े बिक गए। रविदास ने मुस्कुराकर पूछा, और तुमने क्या सीखा? तो बच्चों रवि ने बताया कि जल्दी में कुछ नहीं मिलता, धीरे सबसे बड़ी ताकत है और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हरिदास ने सिर हिलाया और कहा कि अब तुम सच में कुम्हार बन गए हो। तो बच्चों ये कहानी हमें बहुत ही प्यारे से सीख देती है कि धैर्य के बिना कोई भी काम अधूरा रह सकता है। जल्दी सफलता नहीं, सही तरीका निभाना बहुत जरूरी है। और अक्सर हम बहुत सारी चीजों को लेकर ये सोचते हैं कि ये तो मुझे आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों यकीन मानिए, हर पल हमें कुछ न कुछ सीखते रहने की जरूरत है। हम पशुओं से कुछ सीख सकते हैं, हम हमारे बड़ों छोटों हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख ले सकते हैं। तो बच्चों हर इंसान एक मिट्टी की तरह ही होता है, अगर खुद को समय दोगे तो मजबूत बनोगे, अगर जल्दबाजी करोगे तो टूट जाओगे मटकी की तरह। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी, बूढ़ा कुम्हार और अधूरी मिट्टी। आशा करती हूँ बच्चों की आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

बच्चों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, नई प्रेरणादायी कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के सजाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: भाइयों बहनों, जरूर रहे ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर दोनों में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ये उन्होंने रक्षा करे है। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

साथियों, जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर आप आज तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चले, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर चले। जी हाँ श्रोता साथियों, आगे बढ़ने के लिए आप में साहस होना चाहिए। असफलता और आलोचना से डरे बिना अपने सपनों का पीछा करें।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से हर रविवार को हम एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन के कुछ अनुभवों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि मैम आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से आज जुड़ रहे हैं, तो आज हम कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। और मेरा परिचय ये है कि मैं नफीसा बारोट गुजरात से हूँ और उत्थान संस्था से हूँ।
0: बिल्कुल,
1: उत्थान की मैं एक बोर्ड मेंबर हूँ और स्थापक भी हूँ।
0: बिल्कुल,
1: वन ऑफ द स्थापक। और उत्थान 1981 में शुरू हुआ था और हमारा जो

0: एक नजरिया था या हमारा जो गोल था या अभी भी है जो मिशन है कि वंचित समुदाय खास तौर से लड़कियां कैसे वो सशक्त बने, कैसे वो इकट्ठा हो, कैसे उनकी आवाज वो बुलंद हो ताकि वो अलग अलग स्तर पे अपनी बात को रख सके
1: बिल्कुल
0: और बदलाव आ सके
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्थान करके जो संस्था है गुजरात में वो किस तरीके से महिलाओं के उत्थान को लेकर कार्य कर रही हैं ताकि वंचित समुदाय की जो महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए लड़ सके। तो जैसा कि मैम आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत कार्यक्रम के माध्यम से मैं आगे और भी ढेर सारी बातें आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले कार्यक्रम में आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
0: मेरा बचपन जो है वो बड़ा मिक्स था। मेरे पिताजी जो थे वो गवर्नमेंट में थे और उसके जरिए मैं काफी गांव में मैं घूमती थी गुजरात के, क्योंकि वो सरकार में थे और तब से मुझे गांव बहुत अच्छे लगते थे पर ज्यादा जानकारी नहीं थी
1: बिल्कुल।
0: पर मेरे जो ग्रैंड मदर है वो उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि कैंसर था उनको। तब मेरे दिमाग में ये था कि ये ऐसे छोटे गांव में, क्योंकि तब हम भरूच में थे और लगा के भाई वहाँ पर डॉक्टर नहीं है क्योंकि ये ऐसा छोटा गांव है, तो मुझे था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। पर जैसे जैसे बढ़ती गई आगे, यानी मेरी उम्र होती गई, और मुझे लगा कि बहुत सारे दूसरे पहलू हैं जहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटी थी तब मैं ये मन में था
1: बिल्कुल।
0: तो मैं बचपन से ही काफी आजाद बोलें के ख्याल की थी और इसलिए मेरी बहुत सारी लड़ाइयाँ मेरे अपने परिवार में होती थी, मीठी लड़ाइयाँ होती थी और फिर मना भी लेती थी
1: बिल्कुल।
0: तो वो था, पर ये था कि मुझे जो करना होता था वो मैं पूरी कोशिश करती थी कि अपनी बात को मैं रखूं
1: बिल्कुल
0: और मैं आगे जाऊं
1: बिल्कुल। मैम जैसा कि आप बता रहे हैं आपके बचपन के बारे में कि किस तरीके से आपका जो बचपन है वो बहुत अच्छे से बीता और आज बचपन में जब आपकी दादी की डेथ हुई तब आप डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर आपने सोचा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से भी बदलाव लाया जा सकता है। तो जैसा कि आप जो कार्य कर रही हैं और आपने जैसा कि बताया कि आप खुले दिमाग की थी, आप आजाद रहना चाहती थी, तो मैम जैसा कि आपने पहले हमें बताया कि आप एक छोटे से गांव में रहते थे, तो वहां पर हम देखते हैं कि लड़कियों को बहुत सी बार पहले के समय में इन सारी चीजों को लेकर बहुत सी चीजें सहन करनी पड़ती थी, तो क्या वहां पर जब आप ऐसा कुछ करते थे या अपने हक के लिए कुछ बोला करते थे तो वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी?
0: मैं एक दूसरी बात भी कहूँ कि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ क्योंकि मेरा जन्म हुआ था, मैं बोरा हूँ, बोरी परिवार में हूँ
1: बिल्कुल।
0: तो बात तो यही थी कि एक तो आप जो भी कम्युनिटी से आते हैं वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या जो भी हो, वो कम्युनिटी के अपने खुद के ख्यालात होते हैं और अपने बंधन होते हैं। तो वो बात बिल्कुल वही थी कि भाई क्यों लड़की को इतना बाहर निकालना, क्यों वो बाहर जाए, क्यों ये सब करे वगैरह वगैरह, तो अपोजिशन था। दूसरा ये था कि मैंने लव मैरिज हुए और मैं जब 1971 में बड़ौदा गई थी और वहाँ पर यानी मेरे पार्टनर जो हैं वहाँ पर हम चुना, तो हमारा बहुत एक लंबा समय गया जहाँ पर हम लोग ने तय किया था कि हम दोनों परिवारों को हम समझाएंगे। हमें भागना नहीं था, हमें और कुछ नहीं करना था, पर हम समझाना चाहते थे कि हम उनको भी प्यार करते हैं और हमारी अपनी भी जिंदगी कर
1: बिल्कुल।
0: और आज ये है कि वो बदलाव यानी वो इस तरह से हुई है बात कि दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमको एक दूसरे को बहुत चाहते हैं
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे ये लगता है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो परिवार के अंदर आप वो बदलाव की जब शुरुआत करते हैं तो फिर बाहर करने की हिम्मत और भी बढ़ जाती है
1: बिल्कुल। मैम तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता साथियों को आपके जीवन के बारे में दे रहे हैं, यही मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं को इस समय किस तरीके से जागरूक रहने की जरूरत है, आपके द्वारा समुदाय में जब आप जाते हैं तब क्या ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है?
0: ऐसा है कि आप कोई भी गांव में चले जाएं, सिर्फ गुजरात के नहीं, MP के, राजस्थान, कोई भी गांव में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या जो है महिलाएं कहेंगी पानी की है,
1: बिल्कुल,
0: कि वो मीलों दूर जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर हमको ये लगता था कि सालों से अपनी उनकी खुद की जो व्यवस्थाएं थी पानी की, वो पानी की व्यवस्थाओं को बरकरार रखने के लिए उनको सरकार में आवाज उनकी बुलंद होनी चाहिए। और तो इसमें महिलाओं की अगुवाई बहुत ही अहम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम सिर्फ महिलाओं का है, हम मानते हैं कि बराबरी का काम है,
1: बिल्कुल,
0: पानी का। तो ये एक है। दूसरा ये है कि बहुत बड़ी हिंसा, हम जानते हैं कि आज शहर हो गांव है कहीं पर भी, तो हिंसा घर में होती है, इंस्टीट्यूशंस में होती है, बाहर होती है, समाज में होती है। तो इसके सामने आवाज उठाना कि ये गलत है, हम ये नहीं साइन करेंगे,
1: बिल्कुल,
0: और उसके लिए उसके ढांचे खड़े करना, उसके लिए तैयारी करना, वो समझना क्या कायदे हैं, क्या कानून है, किसका वो लोग उपयोग कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्व का है महिलाओं की अगुवाई में और महिलाओं को तैयार होने में।
1: बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा। जैसा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमारी बहनों को बताई है, यही अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्रामीण स्तर पर महिलाएं किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सकती हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए।
0: ऐसा है कि आप अगर कोई भी ग्रामीण विस्तार में चले जाएं और महिलाओं से पूछे या किसी से पूछे, तो आपको दो चार चीजें तो ऐसी मिल ही जाएंगी कि जहाँ पर वो कहेंगे कि अच्छा पहले हम ऐसा करते थे तो इसके ऊपर हम आत्मनिर्भर थे, अब वो व्यवस्थाएं टूट गई है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं कि भी पहले जो थे पेड़ पौधे ये सब बहुत हुआ करते थे, तो फल निकालना, उसमें फल को बेचना, ये या तो कुछ ऐसी ज़मीन जैसे हम लोग ने काम उत्थान ने शुरू किया, तो वो एकदम से खारी ज़मीन पर काम शुरू किया था, जहाँ पर पीलू का नाम का एक वो फ्रूट होता है जिसको यहाँ पे जार बोलते हैं, तो वो उनको बेच के वो लोग का यानी उनको अच्छी आमदनी मिलती थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, ये उसकी पूरी कटाई हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि महिला कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है, तो हमें ये लगता है कि वहीं पर अपने संसाधन जो है, पानी हो, ज़मीन हो, पेड़ पौधे, और दूसरी आज के हिसाब से जो आवश्यक स्किल्स हैं, जो जानकारी है, जो कुशलता है, तो वो अगर उनमें बढ़ाई जाए तो बहुत सारे ऐसे हुनर है जो वहाँ पे लाए जा सकते हैं और महिलाएं और अपने परिवार आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया है कि किस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं, यही अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सी बार महिलाएं आत्मनिर्भर होकर हम देखते हैं कि घर से बाहर निकलकर काम करने की कोशिश करती है, तो उनके घर परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करें।
0: सो सीधी बात है कि अगर ये है कि जैसे ये होता है कि एक पुरुष बाहर निकलता है और जाता है तो पूरा परिवार और समाज ये समझता है और वो मानता है कि वो जब आए तो उसको पानी दो, उसको चाय दो, उसके लिए खाना बनाओ वगैरह वगैरह। तो बात ये है कि अगर एक महिला बाहर काम करती है या घर में भी काम करती है, क्योंकि वो घर में भी काम करती है तो इतने पैसे बचते हैं क्योंकि कोई औरों को देने के बजाय, तो वो अगर जब वो करती है तो उसके लिए ये एक संवेदनशीलता परिवार में होनी ही चाहिए। और ये जो है संवेदनशीलता, ये जो महिलाएं हैं वो खुद भी वो समझा सकती है, वो ला सकती है, और वो लाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है, पर अच्छी तरह से अपनी बात को, अपने अधिकारों को, अपनी के भाई मैं भी एक इंसान हूँ, ये जो बात है वो अपने परिवार के सामने वो रखें, संवेदनशीलता खड़ी करें, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सपोर्ट उसको जो है महिला को वो उस तरह से आ सकता है।
1: बिल्कुल
0: मुश्किल है, आसान नहीं है।
1: बिल्कुल मैम आपने सही कहा। जैसा कि मैम आपने कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हमारी महिलाओं को बताई हैं, यही मैम आप भी एक महिला हैं, तो आपके बारे में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां पर आप बहुत ज्यादा परेशान हुए, हताश हुए, लेकिन आप वहां से बाहर निकले, जो चीज आप हमें बताएंगे वो हमारी महिलाओं के लिए रहेगा कि उनके जीवन में भी अगर कभी कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो वो उससे कैसे लड़ सकती हैं।
0: ऐसा था कि मैं 1998 में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और तब मैं जा रही थी अहमदाबाद काम के बाद, हमारा वहाँ पर एक मीटिंग था दाहोद में
1: जी जी।
0: उसके बाद और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी, मैं बिल्कुल व्हीलचेयर पर आ गई थी
1: जी जी।
0: और वो एक बहुत बड़ी लंबी एक स्ट्रगल रही। तो तब बहुत लोगों को लगा कि तुमको काम छोड़ देना चाहिए अभी, ये क्योंकि ये संस्था की मैं अगुवाई करती थी, बोले आपको छोड़ देना चाहिए, आपको घर पर बैठ के ये करना, आप एडवाइस करो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा काम जो है, मैं जहाँ गांव है, मेरा जो दिल लगता है, मुझे जो भाता है जो काम, मैं वो ही काम करूँगी।
1: बिल्कुल।
0: और मैं कैसे भी करूँगी, व्हीलचेयर पर जाके करूँगी कि कैसे भी करूँगी। तो मुझे ये लगा कि जब ये मैंने तय किया और मैं गांव में जाने लगी, तो ऐसा होता था कि गांव में जब जाऊं और मेरी व्हीलचेयर गाड़ी में से निकले, उसके पहले लोग मुझे गोदी में उठा के चलने लगते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो प्यार मिला मुझे, उससे मेरी और भी ख्वाहिश और मेरी खुद की तमन्नाएं और या तो मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं जैसा कि आपने आपकी जो ये व्यथा बताई है उससे हम ये सभी समझ सकते हैं कि बहुत से लोग हार मानकर वाकई में घर बैठ जाते और वो अपनी जॉब छोड़ देते, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आज अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करने का पूरा नियंत्रण जो है एक उसी इंसान में होता है जो उसे करना चाहता है। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो ये संदेश दूंगी कि आकाश जो है, आसमान जो है, वो उसकी ऊंचाई और उसकी जो विशालता है वो इतनी बड़ी है, इसी तरह से जीवन में करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं
1: जी जी।
0: हमें अंदर से एक निडरता चाहिए और हमें तमन्ना चाहिए
1: बिल्कुल
0: आगे जाने के लिए, और वो जाना ही चाहिए सबको।
1: बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा। तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद आपको।
1: श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे अतिथि जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम उनके जीवन से रूबरू हो पाए, साथ ही उनके कार्य क्षेत्र में किस तरीके से वे कार्य कर रही हैं उसको भी हमने जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वाक रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 32001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org, radio@vakthara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को भूमि

0: भागकर थाने में जा घुसे और अंदर उन्होंने दरवाजे भी बंद कर लिए। वहीं अंग्रेजी उत्तेजित समूहों ने थाने में भी आग लगा दी। श्रोता साथियों, वहीं की वहीं 21 पुलिसमैन और एक अफसर घायल हो गए। गांधी जी ने जब ये समाचार अखबार में पढ़ा तो तत्काल उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और 5 दिनों का उपवास किया। पूरे जोश में चलने वाला आंदोलन यूं स्थगित रखे जाने से छोटे बड़े बहुत सारे कार्यकर्ता भाग गए। देश में फैली इस निराशा के वातावरण को देखकर साथियों, सरकार ने गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने गांधी जी के 3 पुराने लेखों के आधार पर उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। गांधी जी ने कोर्ट में अंग्रेजी इन आरोपों को स्वीकार करके सरकार की प्रजाद्रोही नीति को ललकारा। उन्होंने कहा कि इन लेखों के अलावा उन्होंने ऐसे कई दूसरे लेख और भी लिखे थे।
1: बिल्कुल।
0: और सरकार की नीति यदि ऐसे ही चालू रहेगी तो भविष्य में भी वे ऐसे ही लेख लिखते रहेंगे।
1: जी जी।
0: साथियों, न्यायाधीश को संबोधित करते हुए गांधी जी ने यह भी कहा कि उनके पास यही विकल्प रह जाता है, मुझे सख्त से सख्त सजा सुना दी जाए। न्यायाधीश मिस्टर ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। अंजलि जी,
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ मिस्टर ब्रूमफील्ड ने यह भी कहा था कि परिस्थितियां बदल जाने पर यदि सरकार उन्हें पहले छोड़ देगी तो मुझसे अधिक खुशी दूसरे किसी को नहीं होगी।
1: जी हाँ, बिल्कुल, कशिश आपने सही कहा। इसी ओर महायुद्ध के पश्चात तुर्की में कमाल अतातुर्क नामक एक भले सत्ताधारी सत्ता में आए थे। उन्होंने वहाँ के खलीफा की सत्ता को ही नगण्य कर दिया। इसलिए भारत के मुसलमानों के लिए अंग्रेज सरकार के प्रति विरोध दर्शाने का खास प्रयोजन नहीं रहा।
0: बिल्कुल।
1: इस तरह खिलाफत आंदोलन मंद पड़ गया। श्रोता साथियों, जब जब भी सरकार के विरुद्ध आंदोलन मंद पड़ते तब तब कोमवादी तत्व सिर उठाते। फिर हुल्लड़ बढ़ जाने पर सरकार भी इसका सीधा या टेढ़ा लाभ लेती हुई यह सिद्ध करने का प्रयास करती कि देश में एकता न हो तो स्वराज के लिए वे किस तरह अधिकारी माने जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि इस देश में विगत 12-1300 वर्षों में अनेक बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराहटें हुई हैं। ध्यान लाने योग्य बात यह है कि पहले कभी भी इन टकराहटों ने आज के अर्थ में सांप्रदायिक रूप धारण नहीं किया था।
0: बिल्कुल।
1: दो संप्रदाय मात्र धार्मिक कारणों से नहीं टकराए अथवा किसी संप्रदाय के एक व्यक्ति या समूह का बदला दूसरे स्थान पर या दूसरे समय में पूरे संप्रदाय से यानी कि उस संप्रदाय के अन्य सदस्यों से नहीं लिया जाता था। टकराहटे राजनीतिक या आर्थिक कारणों से होती, उनमें दोनों संप्रदायों के लोग बेशक होते पर बहुधा लड़ने वाले दोनों पक्षों में दोनों कौमों के लोग मिल जाते।
0: बिल्कुल।
1: सांप्रदायिक ढंग से दंगे तो हमारे देश को अंग्रेज सरकार द्वारा मिली खास विरासत है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अंग्रेजों ने कौमी भेदभाव फैलाने में हमारी सामाजिक या आर्थिक कमजोरी या मन स्थितियों का बहुत लाभ लिया। हिंदुओं के जातिवाद और छुआछूत के कारण धर्मांतर किए हुए लोगों के दिलों में स्वाभाविक क्रोध या जुनून रहता।
0: बिल्कुल।
1: 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए कौमी दंगों में बहुत बड़ी संख्या में गोहत्या या मस्जिद के सामने नगारे बजाना बहुत कारण बनते। किसी ने कोई गलत काम किया हो तो इसके बजाय उसके धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति या मनुष्य से बदला लिया जाना कौमी दंगों का निमित्त बन जाता था। ऐसा एक दंगा व्यय सीमा प्रांत के कोहाट शहर में हुआ। कांग्रेस ने इसकी जांच करने के लिए गांधी जी और मौलाना शौकत अली की एक समिति गठित की। अंग्रेज सरकार ने इसी समिति को कोहाट जाने से मना कर दिया। कोहाट दंगों के शिकार लोगों को रावलपिंडी बुलाकर उनसे बात करके इस समिति ने सत्य खोज निकालने का प्रयास किया। गांधी जी ने एक एक गवाह की बहुत बारीकी से तहकीकात की। यह जांच चल रही थी उसी दरमियान उन्होंने देखा कि मौलाना साहब मुसलमानों के दोषों को ढकने के प्रयत्न करते थे। जांच समिति के दोनों सदस्य के निष्कर्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग आए। दोनों के अलग अलग विवरण प्रकाशित हुए। इससे मतभेद बढ़ गया जो बाद में कभी शांत ही नहीं हुआ।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों इससे पूर्व 1924 में कौमी एकता के लिए गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में ही रहते हुए 21 दिनों के उपवास किए थे। उपवास के दरमियान अंजलि जी, दिल्ली में देश के नेताओं की एक परिषद भी बनी थी।
1: बिल्कुल।
0: उसमें कौमी दंगों को होने से रोकने और कौमी परिस्थिति को सुधारने के लिए सर्वसम्मति से कुछ आचार संहिताएं सोची गई थी, परंतु श्रोता साथियों दुर्भाग्यवश उसका क्रियान्वयन ज्यादा समय तक नहीं हो सका था। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रीय विचार के मुस्लिम नेता थे। उनको संसदीय पद्धति पर इतना विश्वास था कि वह किसी भी तरह का

0: गैर संसदीय पद्धति वाला कदम उठाने को तैयार नहीं थे। वे असहयोग को गैर संसदीय मार्ग मानते थे। वहीं सन 1919 में जब कांग्रेस ने असहयोग का अपना कार्यक्रम बनाया, तब जिन्ना ने उसका आखिरी तक विरोध किया। उम्र में जिन्ना गांधी जी से छोटे थे, पर भारत की राजनीति में उन्होंने गांधी जी से पहले ही प्रवेश कर लिया था। कई लोगों का ऐसा अभिप्राय था अंजली जी कि गांधी जी के कांग्रेस प्रवेश और असहयोग आंदोलन को मिले जबरदस्त समर्थन के कारण जिन्ना की कांग्रेस की अगुवाई छिन गई थी।
1: बिल्कुल,
0: उस समय जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे। श्रोता साथियों, लीग के सदस्य बनने से पहले उन्होंने इतना स्पष्ट कर लिया था कि उससे देश की स्वतंत्रता संबंधी उनकी वफादारी में जरा सी भी बाधा नहीं आनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: कांग्रेस के द्वारा असहयोग का मार्ग स्वीकार करने के बाद और कांग्रेस में उनका प्रभाव घटने के बाद जिन्ना ने अपने ढंग से कांग्रेस का सीधे विरोध किए बिना ही ऐसे प्रयास किए थे कि भारत की राजनीति में मुस्लिमों को अधिक अधिकार मिले।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने मुस्लिमों के लिए 14 मुद्दे की मांगे तैयार की थी, पर उसको कांग्रेस या अन्य पक्षों के गले उतारने में वे सफल नहीं रहे थे।
1: जी हाँ,
0: उसके बाद श्रोता साथियों वे इंग्लैंड चले गए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल।
2: नफरत

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि कशिश, गीत से पहले हमने जाना सबके गांधी सांप्रदायिक सौहार्द में ढेर सारी बातों को, यहीं आगे बात करें तो श्रोता साथियों, वहां उन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपने व्यवसाय में मन लगाया था और उसमें ठीक ठाक कमाई भी की थी। अंग्रेजों के पास कांग्रेस का सामना करने के लिए दूसरे मुस्लिम प्रतिनिधि थे और एक नया ही समर्थ विरोधी स्तर निकालने वाले डॉक्टर अंबेडकर उनको मिल गए थे।
1: बिल्कुल।
0: तदुपरांत एकाध वर्ष पश्चात हिंदुस्तान से यूरोप की सैर करने आए लियाकत अली खान नामक एक अमीर खानदान के पुत्र इंग्लैंड में जिन्ना से मिले थे। लियाकत अली खान जिन्ना को यह समझाने में सफल रहे थे कशिश, कि भारत की राजनीति में जिन्ना के नेतृत्व का भले ही स्वागत न हुआ हो, पर देश की मुस्लिम राजनीति में उनका बहुत गर्म जोश से स्वागत होगा। प्रतिष्ठा में जिन्ना से आगे समझे जाने वाले अली बंधु अब रहे नहीं थे। दूसरे राष्ट्रीय मुसलमानों की मुसलमानों में बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी। जिन्ना ही हिंदुस्तान की एक चौथाई जनता का सही नेतृत्व करने के लिए हर तरह से योग्य थे। जिन्ना ने लियाकत अली खान को देश लौट कर संपूर्ण परिस्थिति का अंदाजा लगाने के बाद उन्हें सूचित करने को कहा। लियाकत अली ने भारत जाकर जिन्ना को भरोसा दिलाने योग्य संदेश भेजा था। जब जिन्ना को पक्का विश्वास हो गया था तो वे इंग्लैंड का मकान बेचकर मुंबई आए। उसके उपरांत थोड़े अरसे में ही मुस्लिम लीग ने जिन्ना को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। उसके बाद भी एक डेढ़ वर्ष तक जिन्ना ने कांग्रेस का सीधा सामना करना पड़े ऐसी कोई कार्रवाई हाथ में नहीं ली।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों 1937 के चुनाव के समय मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में बहुमत नहीं मिला। मुस्लिम बहुल प्रदेशों में लीग को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, पर जहां मुस्लिम अल्पसंख्या में थे उन प्रांतों की मुस्लिम सीटों में से लीग ने अच्छी खासी सीटें कब्जे में कर ली थी।
0: बिल्कुल।
1: चुनाव संबंधित लीग और कांग्रेस की सरकारी अधिघोषणा में बहुत साम्य था अंजलि जी। संयुक्त प्रांतों में तो जहां एक पार्टी का उम्मीदवार खड़ा न हुआ हो, वहां उन्होंने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को खुला समर्थन दिया था।
0: जी जी।
1: साथ ही श्रोता साथियों, ऐसा भी हुआ था कि वहां एक ऐसी उपेक्षा खड़ी हो गई थी कि यदि कांग्रेस सरकार बनाएगी तो उसमें लीग विधानसभा सदस्यों को भी स्थान देगी। कांग्रेस को संयुक्त प्रांतों में अच्छा खासा बहुमत मिल गया। श्रोता साथियों, इन्होंने 3 मंत्री लेने की बात की थी, पर बाद में 1 लेने की तैयारी दिखाई।
0: बिल्कुल।
1: इससे संयुक्त प्रांत की मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के बहुत नजदीक आ रही थी वो कांग्रेस से विमुख हो गई। वहीं श्रोता साथियों, मुंबई में कांग्रेस को अच्छा बहुमत नहीं मिला था। वहां लीग को कहा गया कि मिनिस्ट्री में आना हो तो कांग्रेस की शर्त पर हस्ताक्षर करके आ जाओ।
0: बिल्कुल कशिश, मंत्रिमंडल के गठन से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच खुल दरार पड़ी। दिनों दिन वह दरार चौड़ी होती गई। उनमें दोनों पक्षों की चर्चा परिचर्चा में व्यक्त होने वाला अहंकार और तिरस्कार सामने आने लगा था। नेताओं की महत्वाकांक्षा और साथ ही अंग्रेज सरकार की कदम कदम पर बाधाएं तो थी ही। इन सब के परिणाम स्वरूप जिन्ना के मन में यह ग्रंथि तो बन गई थी कि कांग्रेस अपने बहुमत के बल से लीग को सत्ता पर कभी बैठने नहीं देगी।
1: बिल्कुल।
0: इसके राज्य में मुस्लिम कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तब से जिन्ना ने कांग्रेस से लड़ने की ठान ली। अंग्रेज सरकार को स्वतंत्रता की मांग करने वाले और बड़े बहुमत का समर्थन करने वाले पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य कोई ऐसा साधन तो चाहिए ही था। मुस्लिम लीग के रूप में वह उनको मिल गया। इन वर्षों के दरमियान कट्टर हिंदूवादियों की भारतीय राजनीति में दाल गल नहीं रही थी। जिन्ना ऐसे नेता थे जो अपनी चर्चा परिचर्चा में अपने पक्ष में अधिक से अधिक को जोड़ते जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: शुरुआत में उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने चर्चा की थी। उनके वर्षों बाद 1944 में राजाजी और गांधी जी ने व्यक्तिगत हैसियत से लंबी मंत्रणाएं की थी। उनमें किसी को वांछित सफलता मिली नहीं थी। 1939 तक जिन्ना का दावा ऐसा था कि मुस्लिम लीग ही भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें रही सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर, ये बातें अगले रविवार को ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति।
0: नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन
0: वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था
8: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
7: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
8: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
7: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
8: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
7: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
8: होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा, ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
9: होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाइयों बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
2: कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से नए व्यंजनों की विधि को लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो आज भी कार्यक्रम में हम नए व्यंजनों की विधि को लेकर हाजिर हुए हैं। जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातों को, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि आज भी कार्यक्रम के माध्यम से नए व्यंजनों की विधि को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। आज हमारी जो रेडियो साथी जागृति जी हैं, वो एक गृहिणी महिला से बातचीत कर रहे हैं कि वे किस तरीके से अपने घर पर स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपने घर परिवार के सभी सदस्यों का दिल जीतती हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में उन्हीं से इन ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे।
1: नमस्ते आरती जी।
2: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए।
1: बस बढ़िया। जैसा कि आपका स्वागत है वागा रेडियो परिवार में, और सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: धन्यवाद, आपने अपने रेडियो स्टेशन पे मुझे बुलाया। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। मैं बेसिकली बिहार से रहने वाली हूँ, बट ब्रॉन ब्रॉट अप मेरा दिल्ली NCR से है, और आफ्टर मैरिज यहाँ हमारी ट्रांसफर हुई है बांसवाड़ा। तो आपके शहर में आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है।
1: जी जी,
2: बस यही है मेरा परिचय।
1: जी, तो जैसा कि आप बहुत ही अच्छी गृहिणी है, यानी कि हाउस वाइफ है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को आज अच्छे अच्छे व्यंजनों के बारे में बताइए कि आप क्या बता सकते हैं जिसकी सामग्री घर पर अच्छे से उपलब्ध हो जाए, हमारी जो बहन है वो घर पर बना सके और अपने परिवार वालों को खुश कर सके।
2: धन्यवाद, आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं यहाँ पे अपने एक डेली के जीवन के आधार एक गृहिणी होती है कि आपके घर को कैसे दिनचर्या एक समय सारणी के साथ लेके चलती है। मैं आपको एक बेसिक मसालों के साथ और घर में बेसिक चीजें जैसे आलू है, चावल है, कुछ खड़े मसाले हैं, इसके द्वारा एनी टाइम इंस्टेंट आलू दम मटर जीरा पुलाव के बारे में आज बताती हूँ, जो बहुत कम समय में और बहुत ही टेस्टी बनेंगे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि दम आलू के बारे में आज आप बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आप दम आलू में हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, वो सामग्री के बारे में आप हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
2: वैसे कहा जाता है कि बैगन सब्जियों का राजा है, पर बिना आलू के कोई भी सब्जी अधूरी है, चाहे नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ जाए, वेस्ट से नॉर्थ जाए, हर जगह आलू एक मेन इंग्रेडिएंट है। इसके लिए आपके लिए आपको बिना आलू के आप एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो चलिए, आलू दम के लिए हमें बेसिकली एक मीडियम साइज के आलू मिले तो ठीक है, अदरवाइज आपको छोटे आलू मिलते तो और भी अच्छा है। तो हम पहले क्या करेंगे, मैं तीन जनों के हिसाब से बताती हूँ। अगर तीन जने हैं तो उसमें आप एक पाव आलू ले लीजिए।
1: बिल्कुल,
2: या आपको अगर उस अंदाज से आपको कम या ज्यादा लगता है उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आलू ले सकते हैं। अच्छे से धो के हल्का स्टीम लगाएं। ध्यान है, ये दम आलू के लिए आलू इस तरीके से स्टीम होने चाहिए कि ना तो आलू कच्चे रहे ना वो फटे, एटलीस्ट आपके आलू ना 90% तक 85-90% तक पके होने चाहिए। के बाद हम उनको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद एक टूथपिक की सहायता से उसके अंदर छोटे छोटे छेद करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: और जब वो एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, जब देखेंगे कि कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के तेल खूब गर्म हो गया, तब उसे हम मध्यम आंच में फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय हल्का सा उसमें हल्दी और नमक उसके अंदर डाल देंगे, जिससे क्या हल्दी एक प्रॉपर कलर देगा और नमक उस आलू के अंदर चला जाएगा, ताकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो सिर्फ नमक ऊपर ही ना रहे, नमक आलू के अंदर तक चला जाए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने ये दम आलू के बारे में बताया कि इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, साथ में आपने इसकी विधि के बारे में बताया, तो एक बार पुनः मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इसे एक बार फिर से बताइए हमारे श्रोता साथियों को कि इसे कैसे बनाया जा सकता है।
2: इसे दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मैं बॉइल मेथड से आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको आलू को बहुत अच्छे से धोना होगा, उसके अपने आवश्यकता के अनुसार आप आधा किलो एक किलो जैसे आपके घर में लोग हैं उस हिसाब से आप ले, उसे उबाल लें, इस हद तक उबालना कि आपका 85-90% आलू पके होने चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: ये ध्यान रखें कि आलू ओवर बॉइल ना हो, फटे ना आलू। तो ये ऐसे हो जाएगा, उसको ठंडा होने पे आलू को अच्छे से, ध्यान है आलू हल्के गर्म रहेंगे तभी आप छील लीजिए, ताकि बहुत अच्छे से स्मूथली वो छिल जाए। और जैसे थोड़े ठंडे होंगे टूथपिक की सहायता से उसमें छेद कर लेंगे। उसके बाद जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आलू आ जाएंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसे अच्छे से मध्यम लो टू मीडियम, और जब अच्छे से आपको लगे कि वो फ्राई हो चुके, तब हाई फ्लेम में एक बार करके 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में करके उसको निकाल लेंगे। पर ध्यान रहे, जैसे पहले भी बताया कि उसमें हल्दी और हल्का नमक उसको फ्राई करते समय दें ताकि जो आपका हल्दी से एक अच्छा कलर आएगा सब्जी के अंदर
1: जी।
2: और नमक आलू की गहराई तक जाएगा।
1: बिल्कुल, जैसा कि आरती जी आपने अभी दम आलू के बारे में बताया, यही आप हमारे श्रोता साथियों को इसकी ग्रेवी के बारे में बताइए कि किस तरह से इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, अभी जैसे कि हमने अभी मेन जो है आलू दम में हमने फ्राई कर लिए आलू, उसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान दिया है कि आलू टूटे ना, फ्राई करते समय ये भी देखना होगा कि फ्राई करते समय हम कुछ ज्यादा ना उसे अलट पलट करें जिससे हमारे आलू बीच में टूटने की संभावना है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसके बाद जब आलू एकदम नॉर्मल ठंडे हो जाएंगे आप उसको एक बर्तन में निकाल के अलग से रखें। ग्रेवी बनाने से पहले हमें दो चीज को ध्यान रखना होगा
1: जी,
2: कि हमें ग्रेवी कैसी बनानी है। एक हल्की मसालेदार चाहिए ग्रेवी, एक नॉर्मल जैसे डेली उसमें खाते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि आलू दम है तो आलू दम में थोड़ी ग्रेवी हम डिफरेंट टाइप से बनाएंगे।
1: बिल्कुल,
2: और साथ के साथ हम इसे गार्निश करने के लिए बरिस्ता भी बनाएंगे। तो अभी हम पहले बरिस्ता की तरफ चलते हैं और साथ के साथ हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब बरिस्ता पतले प्याजों को लंबा लंबा काट के डीप फ्राई करके जब हल्के गोल्डन ब्राउन कलर आने लगते हैं तो उसे निकाल देंगे। साथ के साथ थोड़ा हल्के मोटे प्याज को काट के उसके साथ दो हरी मिर्ची, साथ में दो से तीन टमाटर, अगर देसी टमाटर है तो दो टमाटर बहुत है, अगर आप नॉर्मली जो मोटे टमाटर ले रहे हैं परदेसी जिसे बोलते हैं वो टमाटर का इस्तेमाल करने हैं तो तीन से चार भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देसी टमाटर आपके थोड़े खट्टे होते हैं। यहाँ पे हमें आलूओं का भी स्वाद पता चलना चाहिए दम में, सिर्फ टमाटरों के खट्टापन से आलू का अपना फ्लेवर ना दब जाए, इसीलिए बैलेंस करते हुए चलेंगे।
1: बिल्कुल,
2: अब इसके साथ हम साथ के साथ अदरक हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भी एक तरफ तैयार करेंगे। अगर ये फ्रेश बनाया है तो बहुत अच्छा है, आप इसे पहले से भी बना के रख सकते हैं। अधिकतर घरों में देखा जाता है कि गृहणियां लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से ही बना के रखते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा इसे एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए फ्रेश इसे बनाएंगे
1: जी।
2: इसी के साथ साथ जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो उसमें थोड़ा सा दो से तीन चम्मच तेल डाल देते हैं और उसमें थोड़ा सा जीरा, साथ में हल्का सा जब ये नॉर्मल जीरा आपका ब्राउन होने के आ जाए तो उसमें थोड़ा सा शाही जीरा, तेज पत्ता, दो काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची डालेंगे। और अगर आपके पास जायत्री या स्टार है फूल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे बहुत ज्यादा ना हो, एक एक लेते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में है तो आप एक दो से तीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ मैं तीन जनों के लिए जैसे कि पहले बताया बना रही तो मैं थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करूंगी, मैं सारी चीजें एक एक करके ले रही हूँ
1: जी।
2: और साथ में एक से दो लौंग के फूल डाल, इसके साथ मध्यम आंच पे, याद रहे यहाँ पे प्याज को पकाने मसाला तैयार करते समय हमें हाई फ्लेम नहीं रखना है, हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना
1: जी।
2: लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हम इसे बनाते हैं, जब देखेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन प्याज हो रहा है तब उसके अंदर हम अपना अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और उसी के अंदर जो हमारे बाकी मसाले जैसे धनिया, जीरा पाउडर, आपका ये गरम मसाला, गरम मसाला बेसिकली मैं प्रीफर करूंगी कि एंड में डालें, पर क्योंकि कुछ लोग साथ की में ही इसे फ्राई करते हैं
1: जी,
2: उसमें कच्चे मसाले भी यूज करते हैं, यहाँ पे मैं सारे जो भी गरम मसाला भी मैं यूज करूंगी तो फ्रेश बनाया है, मैं उसे हल्का ड्राई रोस्ट करूंगी।
1: बिल्कुल,
2: तो यहाँ पे धनिया, हल्दी, मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो कि आपकी सब्जी को एक बहुत प्यारा सा कलर देगी, साथ में उसका अपना एक फ्लेवर देगा। इसके साथ डालते हुए ध्यान रहे जब मसालों में से तेल छूटना शुरू हो जाए तब उसमें हम टमाटर डालेंगे, और टमाटर जैसे बता रखे हैं कि टमाटर चयन करते हुए समय उसकी ब्रीड देखिए देसी है या परदेसी, परदेसी है तो दो से तीन यूज करिए और देसी है तो दो।
1: बिल्कुल,
2: अब वो भी मीडियम साइज के, बहुत ज्यादा ये आपकी क्वांटिटी पे टोटल डिपेंड करता है
1: जी जी।
2: और उसके बाद देखेंगे जब हमारा टमाटर गल गया है तो उसके अंदर हम ना हल्के हाथों से जो हमने फ्राई किए हुए आलू है उन्हें डालेंगे और लो फ्लेम पे दो से तीन बार से चलाएंगे, फिर जिस तरीके की आपको ग्रेवी खानी है उतना उसे पानी ऐड करेंगे और उसे ढक देंगे
1: जी।
2: और जब ढक देंगे तो हमारा जो फ्लेम है वह आपका मीडियम रहेगा।
1: बिल्कुल,
2: ज्यादा लो करेंगे तो आलू ऑलरेडी बॉयल हो रखे हैं और उसमें फ्राई भी हो रखे हैं तो आपके 95% तक आलू ऑलरेडी पक चुके हैं, तो फ्लेम लो करेंगे उनका फटने का भी डर है, इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। जब हम देखेंगे जो आलू के पोर बनाए हुए हैं उसमें छेद स्टिक से किए आपकी ग्रेवी के अंदर तक डिप हो गई है, तो आप एकदम मध्यम आंच करके उसमें हल्की सी रोस्ट की हुई कश्मीरी मेथी डाल दें, और जब होने पे आ जाए ग्रेवी तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे
1: जी।
2: फिर जब ये हो जाए तो इससे पहले दम की ग्रेवी बनाने से पहले हमने बरिस्ता किया था जो कि आपकी गोल्डन ब्राउन प्याज है, तो आप ये देखेंगे कि आपका ऑलमोस्ट आलू दम हो गया है। तो आप आलू दम को फ्लेम बंद करने से पहले जो आपको गरम मसाला देना है आप दे दीजिए, और उसके बाद उसे बंद कर दीजिए
1: बिल्कुल।
2: फिर 2 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे जो आपके जो आलू हैं उनके अंदर पोर्स तक पूरी ग्रेवी जा चुकी है। अब वो आलू दम एकदम अच्छा कलर भी दे रहा है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है, और नमक आप देख लीजिएगा कि आपने जो दिया है दोनों ग्रेवी में थोड़ा आपको कम देना होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आलू में दे रखा है,
1: तो
2: अपने अनुसार आप नमक
1: दे
2: सकते कम या ज्यादा आप अपने अनुसार दे सकते हैं। जब थोड़ा जब आप उसे सर्व करने जाएं या आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंस्टेंट भी उसमें एक तड़का दे सकते हैं, बेसिकली दम देने के लिए 2 चम्मच घी लीजिए और उसके अंदर हल्की सी कश्मीरी मिर्च का या कस्तूरी मेथी अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो वो डाल के लो फ्लेम पे करके और उसे थोड़ा सा तड़का की तरफ करके, और उसे अगर आपके पास पॉसिबल हो तो लोहे की कटोरी हो या करछी हो उसमें करके, और नहीं आपके पास पॉसिबल है तो आप नॉर्मली करके और उसे किसी भारी बर्तन से उस ग्रेवी के अंदर डाल के छोड़ दे
1: बिल्कुल,
2: जिससे उसके अंदर एक दम बेसिकली आ जाएगा। और जब आपको उसे सर्व करना हो तो बरिस्ता जो बना रखा है उसको हल्के हाथों से सब्जी के ऊपर आप दम के ऊपर आप डाल सकते हैं
1: जी।
2: और जब सर्व करने अगर आपकी इच्छा तो उसमें आप धनिया पत्ती दें, अदरवाइज आपने उसमें कस्तूरी मेथी का मिश्रण नहीं डाल रखा है
1: बिल्कुल।
2: इसी के साथ हमारे श्रोताओं के लिए आलू दम
1: बनकर तैयार है बिल्कुल। तो जैसा कि आरती जी आपने बहुत ही अच्छे से दम आलू के बारे में बताया कि किस तरह से हम घर पर दम आलू बना सकते हैं, तो हम आगे भी आपसे जानना चाहेंगे कि दम आलू के साथ हम किस चीज को खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, ये सारी बातें हम आपसे जरूर करेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मनपसंद गीत कौन सा है जो आप वागड़ रेडियो के माध्यम से सुनना चाहेंगे।
2: धन्यवाद आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं अपनी पसंद और नापसंद आप सबके सामने रखूं। तो मेरे तो बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत पुराने गाने नहीं सुनती हूँ, मिडिल एज के 90s के सुनती हूँ, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि आज आप अपने पसंद का कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो वो मुझे सुनाए, ताकि मेरी भी तरह पुराने गानों को लेके थोड़ा सा याद ताजा हो जाए
1: जी। बिल्कुल।

0: जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि आरती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने गीत से पहले हमें दम आलू के बारे में बताया था। यही आरती जी, मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ वागड़ रेडियो परिवार में, और मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगी कि हम दम आलू के साथ क्या खा सकते हैं।
1: ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप उसके साथ क्या खाना पसंद करते हैं
0: जी।
1: अगर आप नॉर्थ से हैं तो आप चावल के साथ इसे ज़्यादा पसंद करेंगे, वाइट राइस हो या जीरा राइस हो या मटर पुलाव हो, या अगर आपको राइस प्रेमी नहीं है तो आप उसको पूरी, पराठे या किसी और चीज़ें सादा रोटी के साथ खाना पसंद कर सकते हैं
0: जी।
1: पर यहाँ मैं एक कहूँगी, जैसे दम आलू बनाया है तो इसके साथ मैं यही कहूँगी कि आप एक पुलाव के साथ मटर पुलाव की रेसिपी बताती हूँ
0: जी।
1: तो फटाफट बनने के तैयार हो जाएगी, 5 मिनट लगेंगे उसे तैयार होने में, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहले हम बासमती चावल ले लेंगे, उसे बनाने से 15 मिनट पहले धो के सोख कर लेंगे। साथ ही साथ हम कुकर अपना तैयार करते हैं, या आपके ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है कि आप उसे कढ़ाई में बना रहे हैं, ओपन पैन में बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, किसी हांडी में बना रहे
0: जी। बिल्कुल, हमारी सुविधा अनुसार हम किसी
1: किसी भी बर्तन के अंदर से बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा उसमें 2 से 3 चम्मच, ये फिर मैं कहती हूँ कि तेल, नमक, घी, ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को तेल घी ज्यादा का परहेज करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कुछ बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ मीडियम करना चाहते हैं, और कुछ बस इतना ही करना चाहते हैं कि जिससे वो बस एक फ्लेवर ले सके
0: जी जी।
1: तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इन थोड़ा सा ले। यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करूंगी, उसमें जैसे पहले भी मैंने जीरा और शाही जीरा दोनों का इस्तेमाल करते हुए, कुछ मैं काजू के 8 से 10 दाने काजू के लूंगी, 10 से 15 किशमिश के दाने लूंगी, 1 छोटी कटोरी फ्रोजन मटर है वो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही साथ मैं थोड़ा तेज पत्ता, नमक, चीनी, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी बनाती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: तो आप तेल कह रही हैं, मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप अपने अनुसार रिफाइन तेल, घी, कुछ
0: जो भी
1: सकते हैं। घी लिया है, घी में देखा है जीरा थोड़ा,

0: गोल्डन ब्राउन सा होने लग गया है। दही के साथ थोड़ा सा मैं शाही जीरा दूंगी, 4 से 5 दाने गोल्डन दाने काली मिर्च के, 2 से 3 मैंने यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल किया है, उसके बाद 1 मैंने छोटी इलायची ली है और उसके साथ ही 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। दालचीनी बेसिकली आपके फ्लेवर के लिए है, क्योंकि ये तेज पत्ते दालचीनी ये सब बाद में हम सर्व करने से पहले उसे हटा देते हैं उसके अंदर। जब हमारा तेल गर्म हो चुका है, जीरा भी उसके अंदर गर्म हो चुका है, सारे ये जो मैंने दालचीनी का टुकड़ा तेज पत्ता आपको मैंने ये लौंग काली मिर्च और जो सामग्री दी है इसे डाल के इसको लो से मीडियम की फ्लेम पे इसके देख लेंगे। जैसे ये ब्राउन होने लग जाएगा तो हम अपने जो चावल सोख किए हुए थे चावल को डाल देंगे
1: जी।
0: 2 से 3 बार उसे हम पलट पलट करेंगे,
1: बिल्कुल
0: उसके अंदर करछी घुमा लेंगे। जब हमारे चावल भुन जाएंगे इसके साथ ही हम उसमें, अगर जैसे मैंने यहाँ 1 कटोरी चावल का इस्तेमाल किया, मैंने 1 कटोरी चावल दिया तो उसके अंदर मैं 2 कटोरी पानी दूंगी,
1: बिल्कुल।
0: तो उसके साथ ही जब हम चावल फ्राई करेंगे उसी समय फिर यहाँ पे नमक मैं बताऊंगी कि आप अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि जो कि हम इसे दम आलू के साथ खाना जा रहे हैं तो दम में भी नमक है, इसीलिए हम इसमें चावल के अंदर हल्का नमक देंगे। ऐसा नमक देंगे कि दम आलू के साथ वो बहुत ज्यादा नमकीन भी ना लगे और एकदम फीका भी ना लगे,
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही नमक को बैलेंस करने के लिए उसमें हम 1/2 चम्मच चीनी देंगे
1: जी।
0: और जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद हम अपने ड्राई फ्रूट जो है, अगर आपको मखाने पसंद है तो आप इसमें 2-4 दाने मखाने भी आप यूज कर सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: मैंने यहाँ बेसिकली काजू और किशमिश का इस्तेमाल किया हुआ है, ये डाल के उस कुकर बंद करके 1 विसल आने तक वेट करेंगे। जैसे हमारे विसल आ जाएगा हम 5 मिनट बाद खोल के देख लेंगे और हल्के हाथों से चावल को अलट पलट कर देंगे ताकि जो हमारे चावल हो स्टिकी ना हो
1: जी।
0: और उसके साथ ही जो बचा हुआ बरिस्ता है हमारा, जो हमने आलू दम बनाने से पहले ही बना लिया था, उसको भी सर पुलाव के ऊपर से डाल देंगे। और उसके साथ एक प्यारा सा, अगर आप रायता प्रेमी हैं तो आप रायता बना सकते हैं, आलू इसका बूंदी का बनाए या प्याज टमाटर का बनाए या खीरे का रायता बना सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है
1: जी।
0: या अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं स्किप करिए, साथ ही साथ आप आलू दम के साथ जीरा मटर पुलाव का
1: आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल। तो जैसा कि आरती जी आज आपने हमारे श्रोता साथियों को बहुत ही अच्छी रेसिपी के बारे में बताया, दम आलू के बारे में बताया, मटर पुलाव के बारे में बताया और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये शुभ अवसर दिया जहाँ आप लोगों के माध्यम से मैंने अपनी आवाज हमारे प्यारे व्यूअर्स को बताई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप एक बार जरूर मुझे बताएं, जागृति जी को बताएं। थैंक यू,
1: धन्यवाद।
2: जैसा कि श्रोता साथियों मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रेडियो साथी हैं जागृति जी, वो एक गृहिणी महिला से जान रही हैं कि किस तरीके से हम घर पर ही अलग अलग तरीके से व्यंजन बना सकते हैं और अपने घर वालों का जो पोषण है वो भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सी बार हमें बहुत ही अलग अलग चीजें खाने का मन करता है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम घर पर बनाकर खाएं तो बाजार की चीजों से हम दूर रह सकते हैं। आशा करती हूँ कि जो व्यंजन की विधि हमने आपको बताई है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले मैं कार्यक्रम का पता आपको बताना चाहूंगी, ताकि आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नए नए व्यंजनों की विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

वागड रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम पर। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार हम और हमारा संविधान में हमने जाना था संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता के बारे में।
1: जी हाँ।
0: और आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत होने वाली है लोकतंत्र और संवैधानिक बुद्धिमत्ता के बारे में।
1: बिल्कुल अंजलि, अगर संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता के गुण के बारे में बात करें तो संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह हर व्यक्ति, हर बच्चे, युवा और लैंगिक पहचान से जुड़े व्यक्ति में एक रूप में पाई जाती है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, लेकिन समाज और सरकार इसे निष्क्रिय बनाए रखते हैं। यदि संवैधानिक मूल्यों को सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो मजहबी, जातीय, नस्लीय आधारों पर होने वाले टकरावों को समाप्त किया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: हर व्यक्ति को ये छूट होनी चाहिए कि वह अपना विचार सामने रख सके। सभी के विचारों को सुनना और समझना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता का सूचक है।
0: जी बिल्कुल।
1: लोकतंत्र के मूल्यों को अपने जीवन के व्यवहार का आधार बनाना भी संवैधानिक बुद्धिमत्ता का ही द्योतक है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें लोकतंत्र और संवैधानिक बुद्धिमत्ता की तो साथियों, लोकतंत्र से आशय 5 वर्ष में एक बार मतदान कर देना भर नहीं है, बल्कि हर मतदाता को अपना मत डालने से पहले अच्छी तरीके से ये सोच विचार करना चाहिए।

0: सूचना समानता या सामाजिक संरक्षण की नीतियाँ कानून बने और लागू हुई तो इसके पीछे मूल शक्ति जनता की ही है। यदि ऐसी नीतियाँ बनी कि जंगलों का विनाश किया जाए, जंगलों से आदिवासियों को बेदखल किया जाए, देश की प्राकृतिक संपदा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया जाए, भीड़ की हिंसा और सांप्रदायिक दंगे हो, तो इसके पीछे भी जनता की ही शक्ति होती है। संविधान के द्वारा उन्हें दी गई शक्ति के बारे में जानना और इसके महत्व को महसूस करना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है।
1: बिल्कुल अंजलि, और जब भी प्रतिनिधि को चुनने का वक्त आए तब नागरिक ये पड़ताल कर पाए कि उम्मीदवार की व्यवस्था में हित क्या है। ये कौशल भी संवैधानिक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। ये समझ और विश्वास बनना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है कि भारत की व्यवस्था का संचालन बाइबिल, कुरान, गीता, चाणक्य नीति, रामायण या महाभारत की बातों के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर होगा।
0: जी हाँ,
1: संवैधानिक मूल्यों के पालन की जिम्मेदारी केवल सरकारों या लोक सेवकों तक सीमित नहीं है। संवैधानिक चेतना और बुद्धिमता के विकास से यह समझ बन पाएगी कि हर भारतीय को अपने निजी जीवन में, अपनी निजी और पेशेवर भूमिकाओं में और अपने सामाजिक व्यवहारों में भी समता, न्याय, बंधुता, गरिमा और स्वतंत्रता के मूल्यों को अपनाना ही होगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें मूल्य आधारित नजरिया क्या है इसको लेकर, तो साथियों सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लक्ष्य से संबंधित नजरिए और विचार अलग अलग हो सकते हैं। इन आधारों पर बनी योजनाओं और कानूनों में भी भिन्नता हो सकती है। नीतियों, कानूनों और विकास के प्रति संस्थाओं और राजनीतिक दलों का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल्यों को नहीं बदला जा सकता। मूल्यों का अपना अर्थ है यह मानना कि सामाजिक आर्थिक बदलाव के केंद्र में न्याय, समता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, बंधुत्वता, गरिमा और स्वतंत्रता जैसे मूल्य होने ही चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर मूल्यों को केंद्र में रखा जाएगा तो नीतियाँ, व्यवस्था और नेतृत्व के बदले से समाज तथा लोगों पर विध्वंसकारी असर नहीं पड़ेगा।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अंजलि। और जीवन मूल्य और उनके विरुद्धाभास के बारे में अगर हम बात करें
0: जी हाँ,
1: तो साथियों सामाजिक विकास और बदलाव की पहल में मूल्य आधारित नजरिया अपनाने का पहला मतलब है निजी जीवन के व्यवहार, नीति के कथानक और संस्थागत व्यवस्थाओं के बीच के विरुद्धाभास को समाप्त करना। भारतीय संविधान के उद्देश्य का सामाजिक न्याय के मूल्यों को अपनाए जाने की घोषणा करती है।
0: जी बिल्कुल,
1: साथ ही संवैधानिक मूल्य आधारित नजरिया अपनाने का मतलब ये है कि हम अपने निजी जीवन में भी अन्य लोगों के साथ सामाजिक न्याय का ही भाव रखें और उसी के अनुरूप बर्ताव करें।
0: जी बिल्कुल,
1: हम अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति सजग हैं, लेकिन यह भी सच है कि बच्चों को स्कूल में छुआछूत नहीं करने का पाठ पढ़ाया जाता है।
0: जी हाँ,
1: और घर वापस लौटते ही वे छुआछूत के तमाम उदाहरण अपने आसपास देखते और सीखते हैं। हम शहर में खुशहाल जीवन के सपने की हर बार व्याख्या करते हैं, लेकिन खुशहाल जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाई जाने वाली योजना के केंद्र में बस्तियों को उजाड़े जाने की कार्यवाही होती है। कुछ की खुशहाली के लिए कुछ को उजाड़े जाने का विरोधाभास खत्म करना ही मूल्य आधारित नजरिए का लक्ष्य है।
0: तो जागृति जी, जैसा कि ये हम जान पाए जीवन मूल्य और उनके विरोधाभास के बारे में, आगे हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन विकास और जीवन मूल्य के बारे में, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बात चल रही है। गीत से पहले हमने जाना था मूल्य आधारित नजरिया, जीवन मूल्य और उनके विरोधाभास के बारे में। अगर यहीं आगे बात करें तो श्रोता साथियों, केवल अपने लिए बहुत अच्छा सपना बुन लेना ही जरूरी नहीं है।
1: जी हाँ,
0: जरूरी यह है कि हमारी आंखों के सपने आम लोगों और हमारे साथियों की आंखों के उन सपनों से जुड़ जाएं जिन्हें अदृश्य मान लिया गया है। समता, स्वतंत्रता, सहभागिता, पारदर्शिता, करुणा, प्रेम, बंधुत्व, जवाबदेहिता अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जागृति जी, गुते हुए मूल्य है, इनमें से कोई भी अकेले मौजूद नहीं रह सकता। समता के बिना स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बिना सहभागिता और सहभागिता के बिना बंधुत्व का होना असंभव है।
1: बिल्कुल सही काम। इसी के साथ श्रोता साथियों, समानता का मतलब सत्ता ही नहीं है। संविधान कहता है हम भारत के लोग, उद्देशिका कहती है व्यक्ति को न्याय गरिमा का अधिकार मिलेगा। 75 साल पहले भी लोगों को पता था कि भारत में सिर्फ औरत और मर्द नहीं रहते, समाज में पारलैंगिक लोग भी हैं तथा तमाम अन्य समुदाय भी हैं। ये संविधान हर लैंगिक पहचान की कद्र करता है।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें प्राकृतिक संसाधन, विकास और जीवन मूल्य की, तो साथियों सरकार और समाज दोनों ही मूल्य विहीन विकास से सहमत हैं। तभी तो 16 लेन की सड़क का विकास लक्ष्य पाने के लिए पहाड़ काट दिए जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: खेती की जमीन बर्बाद की जाती है और जंगल उजाड़ दिए जाते हैं। समाज के लोग इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हैं। बिजली के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इन परियोजनाओं के लिए 125 करोड़ से ज्यादा लोग, उनकी जमीन, घर और गांव से उजाड़ दिए गए। गांव और समाज के एक बड़े तबके को उजाड़ कर बिजली उत्पादन के कारखाने लगाए जाते हैं और समाज का दूसरा तबका उन बिजली की रोशनी में उत्साह मनाता है। प्राकृतिक संसाधनों को आदमी की संपत्ति मानना बंद करना होगा। हाँ, प्राकृतिक संसाधन समता के मूल्य के आधार पर उपयोग में लाए जा सकते हैं।
1: जी हाँ। इसी के साथ अगर महात्मा गांधी जी के शब्दों के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताएं, जिन्होंने यंग इंडिया में 10 सितंबर 1931 में लिखा था कि मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा जो भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त कर दे और उसे आवश्यकता हो तो पाप करने तक का अधिकार दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी ये महसूस करेंगे कि ये उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता और शराब तथा दूसरी नशीली चीजों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे, क्योंकि शेष सारी दुनिया के साथ संबंध शांति का होगा। यानी न तो हम किसी का शोषण करेंगे और न ही किसी के द्वारा अपना होने देंगे। इसीलिए हमारी सेना छोटी से छोटी होगी। ऐसे सब हितों का, जिनका करोड़ों मुख लोगों के हितों से कोई विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जाएगा, फिर वे हित देशी हो या विदेशी। अपने लिए तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि देशी और विदेशी के फर्क से नफरत करता हूँ। ये मेरे सपनों का भारत, इससे भिन्न किसी चीज से मुझे संतोष नहीं होगा।
0: तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अगले रविवार को हमारी मुलाकात होगी भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के साथ में।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अभी कार्यक्रम से विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल
2: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह કે પાણી બચાવો પાણી બચાવો, ને આપણી ધરતીને હરી ભરી રાખો. જલ જીવન હૈ આ આપણી પહેચાન હૈ, હર બૂંદનું મોલ આપણે જાણો.
2: વાગ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિતને પ્રસારિત.
1: ભાઈને બોનો, આપણે ક્યારે વિચાર કર્યો હૈ કે જૈયા પેડની છાવમાં આપણે રહ યા આપણને કેટલી શાંતિ મળે હૈ, ઝીણી હવામાં આપણે હાલ રહ એ ભી આપણા થકી કઈ આશ રાખે હૈ. હવે અગર પેડ ને રહેંગા તો આપણે હરતે જીવંગા. પ્રકૃતિ આપણી જરૂરત નથી બલકી આપણી જિમ્મેદારી હૈ. એક પેડ લગાડંગા, પાણીને બચાડંગા ને આપણી ધરતીને જીવનદાન આલંગા.
0: હવે પ્રકૃતિને બચાવો, ભવિષ્યને હદારો. હવે
1: આજે નાના નાના કદમ હૈ એ આબાવાળા કાલને બદલાવની શરૂઆત હૈ.
0: વાગડ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત.
1: સેહત નું રાજ હું હે બોન, અસલ આદત ને સહી ખુરાક હે બોન. જિંદગી પરબાત ની શરૂઆત પાણી થકી કરો. થોડું સુ વ્યાયામ ને તાત કાઢી ને જીવન જીવા. ફલ સબ્જી રોજે ખા, બીમારી ને દૂર ભગાવા. જંક ફૂડ થકી દૂર રહ, નીંદર પૂરી લ ને ખુશ રહ. હોવે સેહત હે અસલી ધન આપણું, આ જીવન નો સહારો હૈ. આજ થકી આ રાજ ને અપનાવંગા ને જીવન ને સ્વસ્થ બનાવંગા.
0: હોવે સ્વસ્થ રહો, ખુશ રહો, કેમ કી આ છે સેહત નું અસલી રાજ.
2: વાગ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત.

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाइयों बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार कर रही है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल। स्वागत करती हूं आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं आज के पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा वास्ता से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, अगला कार्यक्रम होगा प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में। श्रोता साथियों, फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इस कार्यक्रम को लेकर आएगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे हमारे मेहमानों के जीवन परिचय को। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पारशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बताई रही हूँ, इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा 7:30 पर गांधी जी को पाने का एक प्रयास, गांधी आत्मदर्शन। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 8:30 पर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। श्रोता साथियों, इन्हीं कार्यक्रमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते?

0: माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, कैसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुन, हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, हितर मंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। मारू नाम गिल्ली है, ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है। तो मु दूरी ने बा कने गई, ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है, तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दी दू, ने मने की दू कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी मानो दूधस पिएगा।

0: अगर आपने मुन्नी ने काहे भी खबड़ा मंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानू दूधस पीवू है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

0: साथियों, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जहाँ सेवा है वहाँ सच्ची पूजा है, और जहाँ मानवता है वहीं से शुरू होती है महानता की असली गाथा।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।

0: इस गीत के बाद हमारे श्रोता साथियों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। श्रोता साथियों, यह वो मंच है जहां हम उन महान व्यक्तियों की कहानी को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन से प्रेम, सेवा, सादगी और मानवता का संदेश दिया। जागृति जी, आज हम बात करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से इंसान में बसते उस भगवान की जिन्होंने कहा कि सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जिन्होंने प्रेम को ही सबसे बड़ी पूंजी माना। आज हमारा कार्यक्रम का विषय है रामकृष्ण परमहंस के जीवन परिचय को लेकर।
0: जी हाँ अंजलि, भारत की पवित्र धरती पर अनेक संतों, महापुरुषों और आध्यात्मिक गुरुओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने विचारों और जीवन से समाज को नई दिशा दी।
1: बिल्कुल।
0: उन्हीं महान संतों में एक नाम है रामकृष्ण परमहंस। वे केवल एक संत नहीं थे श्रोताओं, बल्कि प्रेम, भक्ति, करुणा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने ये सिखाया कि हर धर्म का उद्देश्य मानवता और ईश्वर तक पहुंचना है।
1: बिल्कुल।
0: उनका पूरा जीवन सादगी, आध्यात्मिकता और सेवा का संदेश देता है। आज भी उनके विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं अंजलि। कहा गया है कि सच्ची भक्ति वही है जो मानवता की सेवा में दिखाई दे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में अगर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो श्रोताओं, रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था।
1: बिल्कुल।
0: उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय, उनकी माता का नाम चंद्रमणि देवी था। उनका परिवार बहुत गरीब था लेकिन धार्मिक और संस्कारी था। बचपन से ही गदाधर का मन पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लगता था। वे साधारण बच्चों की तरह खेल कूद में कम और आध्यात्मिक चिंतन में अधिक रुचि रखते थे अंजलि।
1: बिल्कुल।
0: कहा जाता है कि बचपन में ही वे प्रकृति की सुंदरता को देखकर ध्यान की अवस्था में चले जाते थे। उनकी मासूमियत और ईश्वर के प्रति प्रेम देखकर गांव के लोग उन्हें अलग दृष्टि से देखते थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि जैसा कि दूसरे लोग खेल कूद में लगे रहते थे, लेकिन गदाधर घंटों मंदिर में बैठकर भगवान की आराधना करते थे।
0: बिल्कुल।
1: उन्हें पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जीवन की सच्चाई समझने में उनकी गहरी रुचि थी। वे कहते थे कि केवल किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं आता, सच्चा ज्ञान मन की पवित्रता से आता है।
0: बिल्कुल।
1: उनका स्वभाव बहुत सरल और दयालु था। श्रोता साथियों, यदि कोई गरीब या दुखी व्यक्ति मिलता तो वे उसकी मदद करने की कोशिश करते थे। इसी के साथ बात करें जागृति जी उनकी यात्रा की, तो श्रोता साथियों, कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी वे बने।
0: जी हाँ।
1: वहीं से उनके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। वे माँ काली को अपनी सच्ची माँ मानते थे। पूजा करते समय वे इतने भावुक हो जाते कि कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगते।
0: बिल्कुल।
1: वे घंटों ध्यान में डूबे रहते, लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी, लोग दूर से उनके दर्शन करने आने लगे थे।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि आपने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में सेवा के बारे में बताया, यही अगर हमारे श्रोता साथियों को शिक्षा और आध्यात्मिक झुकाव के बारे में हम बताएं।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, रामकृष्ण परमहंस ने औपचारिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की थी। उनका मानना था कि केवल पुस्तक के ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जीवन का वास्तविक ज्ञान आत्मा और अनुभव से मिलता है। वे पढ़ाई से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान में विश्वास रखते थे। कम उम्र में ही उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, भक्ति गीतों और संतों की कथाओं में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी थी। वे अक्सर मंदिरों में समय बिताते और ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते।
1: बिल्कुल।
0: उनका विश्वास था कि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है और उसे पाने के लिए सच्चे मन की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी विशेषता थी कि सभी धर्मों के प्रति वे सम्मान करते थे। उन्होंने केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म की भी साधना की। और फिर उन्होंने कहा कि सभी धर्म के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है।
0: बिल्कुल।
1: उनका यह संदेश आज भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। आज जब छोटी छोटी बातों पर लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ जाते हैं, तब रामकृष्ण परमहंस का जो जीवन है वो हमें प्रेम और भाईचारे की सीख देता है। इसी के साथ जागृति जी, अब बात आती है कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद से उनकी मुलाकात हुई। तो श्रोता साथियों, रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे स्वामी विवेकानंद
0: जी हाँ।
1: जब स्वामी विवेकानंद युवा थे तब उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे ईश्वर के बारे में बहुत सवाल पूछते थे। उन्होंने कई विद्वानों से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, लेकिन किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले तब परमहंस जी ने कहा, हाँ मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: यह सुनकर नरेंद्रनाथ बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे वे उनके शिष्य बन गए और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए।
0: बिल्कुल अंजलि, उन्होंने कहा था कि जैसी अलग अलग नदियाँ अंत में समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार सभी धर्म अंततः एक ही सत्य तक पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उस समय समाज में धर्म के नाम पर भेदभाव और संघर्ष बढ़ रहा था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने प्रेम और एकता का संदेश दिया था। उनकी यही सोच आज के समाज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब दुनिया में धार्मिक विवाद बढ़ते हैं तब उनके विचार हमें सहिष्णुता और भाईचारे की सीख देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात चल रही है रामकृष्ण परमहंस के जीवन परिचय को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, हम आगे भी जानेंगे उनके जीवन परिचय को, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल। तो साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से रामकृष्ण परमहंस की जो मुलाकात है वो स्वामी विवेकानंद से हुई थी, यही बात करें तो श्रोता साथियों, रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है।
1: बिल्कुल,
0: वे लोगों को प्रेम करुणा और सादगी का जीवन अपनाने की प्रेरणा देते थे। उनके अनुसार जागृति जी, यदि मन साफ हो तो हर काम पूजा बन जाता है। ये कभी दिखावा नहीं करते। उनका जीवन बहुत सरल था। उन्होंने सिखाया कि बड़ा बनने के लिए धन नहीं बल्कि अच्छा हृदय चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि, रामकृष्ण परमहंस का जीवन बहुत ही सरल था। वे दिखावे और धन दौलत से बहुत दूर थे। उनका मानना था कि मनुष्य को अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना होगा।
0: बिल्कुल,
1: वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनके विचारों में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं था। वे कहते थे कि मनुष्य जितना विनम्र होगा उतना ही ईश्वर के करीब पहुंचेगा।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, मानसिक शांति को खोते जा रहे हैं। ऐसे समय में रामकृष्ण परमहंस का सादा जीवन हमें सच्ची खुशी का अर्थ समझाता है।
0: जी जी,
1: यही अगर समाज पर प्रभाव को लेकर हम बात करें तो अंजलि, रामकृष्ण परमहंस ने अपने उपदेशों से समाज में नई चेतना जगाई थी। उन्होंने लोगों को प्रेम, सहानुभूति और सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी थी, जैसा कि आपने बताया था।
0: बिल्कुल,
1: उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोगों ने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया। उनके शिष्यों ने आगे चलकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। आज भी संस्था गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता कर रही है। श्रोताओ, रामकृष्ण परमहंस का जीवन ये बताता है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने अच्छे कर्मों और विचारों से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज के युवाओं के लिए रामकृष्ण परमहंस का जीवन बहुत प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल,
0: वे सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई जरूरी है, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मन की शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर मिलती है। रामकृष्ण परमहंस ने अपना पूरा जीवन लोगों को प्रेम और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने में लगा दिया। 1886 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही जीवित है श्रोता साथियों जितनी उस समय थी। कहना चाहेंगे कि रामकृष्ण परमहंस केवल एक संत नहीं थे बल्कि प्रेम, सहिष्णुता और मानवता की जीवित मिसाल थे। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म का असली अर्थ इंसान को इंसान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी सेवा भाव शामिल कर लें तो हमारा समाज बहुत सुंदर बन सकता है। याद रखिए कि बड़े मंदिर बनाने से पहले अपने मन को पवित्र बनाना जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: और शायद यही रामकृष्ण परमहंस के जीवन का सबसे बड़ा संदेश था।
1: बिल्कुल अंजलि, जीवन के अंतिम वर्षों में रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित हो गए। बीमारी के बावजूद उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा। वे हमेशा ईश्वर के ध्यान और मानव सेवा की बात करते रहे। 16 अगस्त 1886 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। उनका जीवन और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। श्रोताओं, कहा गया है कि महापुरुष शरीर से जाते हैं लेकिन उनके विचार अमर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह रामकृष्ण परमहंस का जीवन प्रेम, भक्ति, सादगी और मानवता की अनमोल मिसाल है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े से बड़े कर्मकांड नहीं बल्कि सच्चा मन और सेवा भाव होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने सभी धर्मों को समान माना और मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में उनके विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चले तो समाज में प्रेम, शांति और भाईचारा स्थापित हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, सेवा और विनम्रता को अपने जीवन में अपनाना होगा श्रोताओं, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर मंदिरों में ही नहीं हर इंसान के दिल में बसता है। जो मानवता की सेवा करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हर युग में कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ही संत थे जिन्होंने प्रेम को पूजा और मानवता का सबसे बड़ा धर्म बताया।
1: बिल्कुल,
0: हम भी अपने जीवन में श्रोता साथियों ये संकल्प ले सकते हैं कि किसी के प्रति नफरत नहीं रखेंगे, जरूरतमंद

0: उनकी मदद करेंगे, रिश्तों में अपनापन बढ़ाएंगे और इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि यही वह रास्ता है जो समाज को बेहतर और जीवन को सुंदर बनाता है।
1: जी हाँ।
0: अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मंदिरों में भगवान खोजने से पहले यदि हम इंसान के दिल को समझ ले तो शायद वही ईश्वर हमें मिल जाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में रामकृष्ण परमहंस को लेकर बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी
0: आपको हाँ। हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhana.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक महान पुरुष के जीवन परिचय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी है उन बुजुर्गों की जिनके बिना घर सिर्फ मकान बनकर रह जाता है। कहानी का शीर्षक है बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, अगर वही हाथ बुढ़ापे में कांपने लगे तो हमारा फर्ज क्या बनता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहानी का शीर्षक बताया था कि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है। कहते हैं दोस्तों, पेड़ चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसकी छाया हमेशा सुकून देती है। ठीक वैसे ही हमारे बुजुर्ग भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आइए दोस्तों, सुनाती हूँ कहानी। कहानी का शीर्षक है बुजुर्गों का सम्मान। दोस्तों, गांव के किनारे एक छोटा सा घर, उस घर में दादाजी राम प्रसाद, उनका बेटा महेश, बहू सुनीता और पोता आरव रहते थे। कभी यही घर हंसी खुशियों और अपनापन से भरा रहता था, लेकिन समय बदलने लगा। जैसे जैसे महेश की नौकरी शहर में अच्छी होती गई, वैसे वैसे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। राम प्रसाद जी अब बूढ़े हो चुके थे, हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो गई थी और चलने के लिए लाठी का सहारा लेना था, मगर दिल अभी भी वैसा ही था, अपने परिवार के लिए प्यार से भरा हुआ। दोस्तों, हर सुबह वे जल्दी उठते, आंगन में बैठकर भगवान का नाम लेते और अपने पोते आरव को स्कूल जाते हुए आशीर्वाद देते। आरव उनसे बहुत प्यार करता था, वो रोज दादाजी से कहानियां सुनता और उनकी गोद में सिर रखकर सो जाता। लेकिन महेश को अब ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि बूढ़े पिता अब सिर्फ जिम्मेदारी बन चुके हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय महेश बहुत परेशान था। कंपनी में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। घर आते ही उसने देखा कि दादाजी गलती से पानी का गिलास गिरा बैठे हैं। महेश गुस्से में चिल्लाया, पिताजी, आपसे एक गिलास भी संभाला नहीं जाता, हर दिन कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देते हैं। दादाजी चुप रहे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुनीता भी बोली, अब इनकी देखभाल करना मुश्किल हो गया है। ये सब सुनकर आरव को बहुत दुख हुआ। दोस्तों, उसने पहली बार अपने दादाजी को इतना टूटा हुआ देखा था। उस रात दादाजी खाना भी ठीक से नहीं खा पाए। वे अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गए, दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखते रहे। उन तस्वीरों में महेश छोटा बच्चा था, जिसे उन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल पहुंचाया था। राम प्रसाद जी को याद आया कि कैसे उन्होंने खेत बेचकर बेटे को पढ़ाया था। खुद फटे कपड़े पहन लेते थे, लेकिन बेटे की फीस कभी रुकने नहीं दी उन्होंने। कई रातें भूखे भी सो गए, मगर बेटे के सपनों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा था। दोस्तों, अगले दिन गांव में एक कार्यक्रम था, स्कूल में बुजुर्गों का सम्मान विषय पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी। आरव भी उसमें हिस्सा लेने वाला था। जब उसकी बारी आई, वो मंच पर गया। उसकी आंखें नम थी। दोस्तों, उसने बोलना शुरू किया, बुजुर्ग पेड़ की उस छाया की तरह होते हैं जो खुद धूप सहकर हमें ठंडक देते हैं। माँ बाप और दादा दादी अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा देते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तब कई लोग उन्हें बोझ समझने लगते हैं। क्या यही इंसानियत है? पूरा होल शांत हो गया। दोस्तों, आरव आगे बोला,

मेरे दादाजी ने मेरे पापा को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। उन्होंने अपना जीवन त्याग में बिताया, लेकिन आज उन्हें सम्मान की जगह ताने मिलते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमेशा हमसे क्या सीखेगी। दोस्तों, महेश भी वहाँ बैठे थे, यानी कि आरव के पिता भी वहीं बैठे थे। हर शब्द उनके दिल पर चोट कर रहा था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत होती है वहाँ भगवान का वास होता है, और जिस घर में बुजुर्ग रोते हैं वहाँ सुख कभी नहीं टिकता। इतना कहकर आरव रो पड़ा। श्रोताओं, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन महेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। उस रात महेश घर लौटा तो उसने पहली बार अपने पिता के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। राम प्रसाद जी खिड़की के पास बैठे आसमान देख रहे थे। महेश उनके पास जाकर घुटनों पर बैठ गया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मेहनत और त्याग भूल गया था। श्रोताओं, राम प्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, माँ बाप बच्चों से नाराज नहीं रहते, बस इतना चाहते हैं कि बच्चे उन्हें प्यार दें, सम्मान दें। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। दोस्तों, महेश अब रोज अपने पिता के साथ समय बिताने लगा। वो उन्हें पार्क ले जाता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता और हर छोटी छोटी बातों में उनका सम्मान करता। धीरे धीरे घर में खुशियाँ लौटने लगी। एक दिन दादाजी ने आरव से कहा, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है वही जिंदगी में सच में बड़ा बनता है। आरव मुस्कुराया और बोला, दादाजी, मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। समय बीतता गया। कुछ साल बाद आरव बड़ा अधिकारी बन गया। लोग उसकी सफलता की तारीफ करते थे, लेकिन जब भी कोई उसकी सफलता का राज पूछता वह एक ही बात कहता, मैंने अपने दादाजी से सीखा है कि जिंदगी में बड़ा बनने से पहले इंसान बनना बहुत जरूरी है। उसने अपने घर के बाहर एक पंक्ति लिखवाई थी, जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं उस घर में खुशियाँ कभी कम नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि बुजुर्ग हमारे अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का खजाना होते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित किया होता है, इसलिए उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं है बल्कि हमारी इंसानियत की पहचान भी है। कहा गया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं, परिवार की नींव है, और जो अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करता है जीवन उसे सम्मान लौटाता है। आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अगर घर में बुजुर्ग है तो समझ लीजिए घर में दुआएं अभी बाकी है। उनका सम्मान कीजिए क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ तस्वीरें और यादें रह जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुजुर्गों का सम्मान। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रहेंगी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी, कहानी का शीर्षक था बुजुर्गों का सम्मान। आपसे ही कहना चाहेंगे दोस्तों इस कहानी के माध्यम से कि समय बहुत तेज चलता है। आज जो हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद रख रहे हैं, कल शायद सिर्फ यादों में रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि बुजुर्ग हमारे जीवन की वो अमूल्य धरोहर हैं, जिनके अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद से परिवार मजबूत बनता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे सुख, शिक्षा और भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। जब हम छोटे थे तब उन्होंने हमें संभाला था, चलना सिखाया था, गिरने पर उठाया और हर मुश्किलों में हमारा साथ दिया। इसलिए जब वे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सहारे और सम्मान की जरूरत होती है, तब उनका साथ देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। दोस्तों, आज आधुनिकता और भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने बुजुर्गों को अकेला छोड़ देते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आकर बस जाती है। बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते दोस्तों, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के सच्चे संरक्षक होते हैं। हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार के लिए बोझ नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि धन दौलत तो समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों की दुआएं इंसान को जीवन भर संभाल कर रखती है। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों कि जिस घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं, उस घर में खुशियां कभी कम नहीं होती। अब आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि घर की असली रौनक महंगे सामान में नहीं बल्कि बुजुर्गों की मुस्कान में होती है। इन्हीं चंद पंक्तियों और इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे श्रोता साथियों। और आपसे भी उम्मीद यही करते हैं कि आप भी अपने घर में बुजुर्ग होंगे तो उनका सम्मान आरव की तरह ही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। जाने से पहले आपको पता बताना चाहेंगे ताकि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
6: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
5: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
6: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
5: होवे आज नाना ना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी मैं हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानी आपको सुनवाती हूँ, जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी सीख देती है। और इन कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ अलग बातों को सीख पाते हैं। तो आज भी मैं कार्यक्रम में कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरू में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज भी मैं आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। आज हमारी कहानी का शीर्षक है आखिरी रोटी। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ और उसका छोटा बेटा रहते थे जिसका नाम था गोपाल। उनका घर मिट्टी का था, जब से बारिश टपकती थी और रसोई में अक्सर खाली बर्तन ही दिखते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। पूरा दिन बीत गया था लेकिन घर में खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। माँ ने रोटी को हाथ में लिया और गहरी सांस ली। माँ ने रोटी गोपाल को देते हुए कहा, बेटा तुम खा लो, तुम छोटे हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। गोपाल ने रोटी को देखा, फिर माँ की ओर देखा। माँ आपने कुछ खाया, उसने पूछा। माँ मुस्कुरा दी, मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। गोपाल समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। वह रोटी लेकर बाहर चला गया। वह सोच रहा था, अगर मैं खा लूं तो माँ भूखी रहेगी और माँ खा ले तो मैं भूखा रहूंगा। बच्चों, उसके छोटे से दिल में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत कमजोर था, कांप रहा था और उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना है? गोपाल के हाथ में वही आखिरी रोटी थी। गोपाल कुछ पल चुप रहा। बच्चों, उसने सोचा कि अगर मैं ये रोटी दे दूं तो माँ और मैं दोनों भूखे रह जाएंगे। फिर उसने बूढ़े आदमी की हालत देखी और बिना कुछ बोले वह रोटी उसके हाथ में रख दी। गोपाल घर लौटा। माँ ने पूछा, रोटी खा ली? गोपाल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उस रात दोनों भूखे सो गए, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत सारे अनाज के बोरे रखे थे। माँ हैरान रह गई, यह सब कहाँ से आया? तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी किसी भूखे को दे दी, इससे बड़ा दिल कोई नहीं रख सकता। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उन्हें अनाज मिल गया, सबसे बड़ी बात यह थी उन्होंने दूसरों के लिए जीना सीख लिया था। तो बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि सच्ची इंसानियत वही है जब हम अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत देखें। छोटा त्याग भी जीवन बदल सकता है और दिल से किया गया अच्छा काम कभी बेकार नहीं होता। बच्चों, अक्सर हमारे जीवन में भी बहुत सी बार ऐसा होता है, हम पहले खुद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। बहुत सी बार हम अपने माता पिता को लेकर भी खुद स्वार्थी हो जाते हैं। पहले हम अपने बारे में सोचते हैं और फिर माता पिता के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी इंसान हो, सबसे पहले दूसरों की मदद करनी है, फिर हमारी खुद की मदद करनी है। जैसा कि गोपाल के पास एक ही रोटी थी, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े आदमी की भूख को कम करने के लिए वो रोटी उसे दे दी। तो इस तरीके से बच्चों, हमें ये कहानी बहुत ही प्यारी सी सीख देती है। इस कहानी की गहराई यही है कि जब आपके पास कुछ भी न हो तब भी आप देने का हौसला रखें, वहीं से इंसान महान बनता है। तो बच्चों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। आगे एक और प्यारी सी कहानी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी, यही अब हमारी अगली कहानी है, बूढ़ा कुम्हार और अधूरी मिट्टी। जी हाँ बच्चों, एक शांत गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसके हाथों में जादू था, मिट्टी के ऐसे घड़े बनाता कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसका एक बेटा था रवि। रवि तेज था लेकिन धैर्य नहीं था। एक दिन हरिदास चाक चला रहा था। रवि बोला, बाबा ये सब पुराना तरीका है, मैं जल्दी जल्दी घड़े बनाना चाहता हूँ। हरिदास मुस्कुराया, जल्दी में बनाई चीज टिकती नहीं है बेटा। रवि हंस पड़ा, आज के जमाने में तेज चलना पड़ता है बाबा। रवि ने खुद चाक संभाल लिया, उसने जल्दी जल्दी मिट्टी उगाई, पानी मिलाया और घड़ा बनाने लगा। कुछ ही देर में घड़ा बन गया। रवि खुश होकर बोला, देखा बाबा, आपने पूरा दिन लगाया, मैंने आधे घंटे में बना दिया। हरिदास ने घड़े को ध्यान से देखा, फिर धीरे से पूछा, इसमें ठहराव कहाँ है रवि? रवि चिढ़ गया, आप हर चीज में क्यों कमी ढूंढते हो? अगले दिन रवि अपने बनाए घड़े बाजार ले गया। एक ग्राहक ने घड़ा उठाया, कितने का है? रवि बोला, 50 रुपए। ग्राहक ने घड़े को थपथपाया और अचानक ठक, घड़ा बीच से फट गया। ग्राहक गुस्से में, ये क्या मजाक है? बच्चों, रवि शर्मिंदा हो गया। रवि घर लौटा, हरिदास ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने गुस्से में कहा, लोग ही बेकार हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। हरिदास शांत स्वर में बोला, लोग नहीं, घड़ा अधूरा था। रवि चुप हो गया। उस रात रवि धीरे से बोला, बाबा क्या सच में मैं गलत हूँ? रविदास ने उसकी ओर देखा और कहा कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे मानना और सीखना जरूरी है। बच्चों, रवि की आंखें झुक गई। उसने पिता से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? हरिदास ने मिट्टी उगाई और कहा, देखो बेटा, मिट्टी को समझना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है, जल्दी करोगे तो वह टूट जाएगी। रवि यह सब बातें ध्यान से सुन रहा था। और इंसान भी मिट्टी की तरह ही होता है, हरिदास बोला, अगर खुद को समय नहीं दोगे तो तुम भी अंदर से टूट जाओगे। बच्चों, फिर होती है नई शुरुआत। अगले दिन रवि फिर चाक के पास आया। इस बार उसने धीरे धीरे मिट्टी उठाई। हरिदास ने पूछा, आज जल्दी नहीं है? रवि हल्का मुस्कुराया, आज सीखना है, बनाना नहीं। दिन बीतते गए, रवि अब हर घड़ा ध्यान से बनाता। कभी घड़ा बिगड़ जाता तो गुस्सा नहीं करता, वह खुद से कहता, अब मैं सीख रहा हूँ। कुछ महीनों बाद बच्चों, रवि ने घड़ा बनाया। हरिदास ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में चमक आई। अब इसमें जान है बेटा, रवि ने पूछा, सच में? हरिदास ने कहा, अब तुम सिर्फ घड़ा नहीं, अपना धैर्य बना रहे हो बेटा। रवि फिर बाजार गया और वही ग्राहक मिला। उसने फिर पूछा, कितने का है? रवि ने कहा, पहले देखिए। ग्राहक ने घड़ा उठाया, थपथपाया, इस बार घड़ा मजबूत था। वो मुस्कुराया

बात बनी है। रवि घर लौटा, बाबा इस बार सब घड़े बिक गए। रविदास ने मुस्कुराकर पूछा, और तुमने क्या सीखा? तो बच्चा रवि ने बताया कि जल्दी में कुछ नहीं मिलता, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हरिदास ने सिर हिलाया और कहा कि अब तुम सच में कुम्हार बन गए हो। तो बच्चों, ये कहानी हमें बहुत ही प्यारे से सीख देती है कि धैर्य के बिना कोई भी काम अधूरा रह सकता है। जल्दी सफलता नहीं, सही तरीका निभाना बहुत जरूरी है। और अक्सर हम बहुत सारी चीजों को लेकर ये सोचते हैं कि ये तो मुझे आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, यकीन मानिए, हर पल हमें कुछ न कुछ सीखते रहने की जरूरत है। हम पशुओं से कुछ सीख सकते हैं, हम हमारे बड़ों छोटों हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख ले सकते हैं। तो बच्चों, हर इंसान एक मिट्टी की तरह ही होता है। अगर खुद को समय दोगे तो मजबूत बनोगे, अगर जल्दबाजी करोगे तो टूट जाओगे मटकी की तरह। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी, बूढ़ा कुम्हार और अधूरी मिट्टी। आशा करती हूँ बच्चों की आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

मिले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

बच्चों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की समय विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, नई प्रेरणादायी कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के सजाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जागृति बोन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बोन हूँ था का
2: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
3: ओ अंजलि बोन इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
2: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
3: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
2: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

साथियों, जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर आप आज तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चले, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर चले। जी हाँ श्रोता साथियों, आगे बढ़ने के लिए आप में साहस होना चाहिए। असफलता और आलोचना से डरे बिना अपने सपनों का पीछा करें।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से हर रविवार को हम एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन के कुछ अनुभवों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि मैम आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से आज जुड़ रहे हैं, तो आज हम कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। और मेरा परिचय ये है कि मैं नफीसा बारोट गुजरात से हूँ और उत्थान संस्था से हूँ।
0: बिल्कुल,
1: उत्थान की मैं एक बोर्ड मेंबर हूँ और स्थापक भी हूँ।
0: बिल्कुल,
1: वन ऑफ द स्थापक। और उत्थान 1981 में शुरू हुआ था और हमारा जो एक नज़रिया था या हमारा जो गोल था या अभी भी है जो मिशन है कि वंचित समुदाय खास तौर से लड़कियाँ कैसे वो सशक्त बने, कैसे वो इकट्ठा हो, कैसे उनकी आवाज़ वो बुलंद हो ताकि वो अलग अलग स्तर पे अपनी बात को रख सके।
0: बिल्कुल,
1: और बदलाव आ सके।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्थान करके जो संस्था है गुजरात में, वो किस तरीके से महिलाओं के उत्थान को लेकर कार्य कर रही है ताकि वंचित समुदाय की जो महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए लड़ सके। तो जैसा कि मैम आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत कार्यक्रम के माध्यम से मैं आगे और भी ढेर सारी बातें आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन मैं सबसे पहले कार्यक्रम में आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: मेरा बचपन जो है वो बड़ा मिक्स था। मेरे पिताजी जो थे वो गवर्नमेंट में थे और उसके जरिए मैं काफी गाँव में मैं घूमती थी गुजरात के, क्योंकि वो सरकार में थे और तब से मुझे गांव बहुत अच्छे लगते थे पर ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
0: बिल्कुल,
1: पर मेरे जो ग्रैंड मदर हैं वो उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि कैंसर था उनको। तब मेरे दिमाग में ये था कि ये ऐसे छोटे गांव में, क्योंकि तब हम भरूच में थे और लगा के भाई वहाँ पर डॉक्टर नहीं है क्योंकि ये ऐसा छोटा गांव है, तो मुझे था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। पर जैसे जैसे बढ़ती गई आगे, यानी मेरी उम्र होती गई, और मुझे लगा कि बहुत सारे दूसरे पहलू हैं जहां पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटी थी तब मैं ये मन में था।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं बचपन से ही काफ़ी आज़ाद पुलिंग के ख्याल की थी और इसलिए मेरी बहुत सारी लड़ाइयाँ मेरे अपने परिवार में होती थी, मीठी लड़ाइयाँ होती थी और फिर मना भी लेती थी।
0: बिल्कुल,
1: तो वो था, पर ये था कि मुझे जो करना होता था वो मैं पूरी कोशिश करती थी कि अपनी बात को मैं रखूं।
0: बिल्कुल,
1: और मैं आगे जाऊं।
0: बिल्कुल मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं आपके बचपन के बारे में कि किस तरीके से आपका जो बचपन है वो बहुत अच्छे से बीता और आज बचपन में जब आपकी दादी की डेथ हुई तब आप डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर आपने सोचा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से भी बदलाव लाया जा सकता है। तो जैसा कि आप जो कार्य कर रही हैं और आपने जैसा कि बताया कि आप खुले दिमाग की थी, आप आजाद रहना चाहती थी, तो मैम जैसा कि आपने पहले हमें बताया कि आप एक छोटे से गांव में रहते थे, तो वहां पर हम देखते हैं कि लड़कियों को बहुत सी बार पहले के समय में इन सारी चीजों को लेकर बहुत सी चीजें सहन करनी पड़ती थी, तो क्या वहां पर जब आप ऐसा कुछ करते थे या अपने हक के लिए कुछ बोला करते थे तो वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी?
1: मैं एक दूसरी बात भी कहूँ कि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था, मैं बोरा हूँ, बोरी परिवार में हूँ।
0: बिल्कुल,
1: तो बात तो यही थी कि एक तो आप जो भी कम्युनिटी से आते हैं वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या जो भी हो, वो कम्युनिटी के अपने खुद के ख्यालात होते हैं और अपने बंधन होते हैं। तो वो बात बिल्कुल वही थी कि भाई क्यों लड़की को इतना बाहर निकालना, क्यों वो बाहर जाए, क्यों ये सब करे वगैरह वगैरह, तो अपोजिशन था। दूसरा ये था कि मैंने लव मैरिज हुए और मैं जब 1971 में बड़ौदा गई थी और वहाँ पर यानी मेरे पार्टनर जो हैं वहाँ पर मैं चुना, तो हमारा बहुत एक लंबा समय गया जहाँ पर हम लोग ने तय किया था कि हम दोनों परिवारों को हम समझाएंगे। हमें भागना नहीं था, हमें और कुछ नहीं करना था, पर हम समझाना चाहते थे कि हम उनको भी प्यार करते हैं और हमारी अपनी भी जिंदगी कर। और आज ये है कि वो बदलाव, यानी वो इस तरह से हुई है बात कि दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमको एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो परिवार के अंदर आप वो बदलाव की जब शुरुआत करते हैं तो फिर बाहर करने की हिम्मत और भी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता साथियों को आपके जीवन के बारे में दे रहे हैं, यही मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं को इस समय किस तरीके से जागरूक रहने की जरूरत है। आपके द्वारा समुदाय में जब आप जाते हैं तब क्या ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है?
1: ऐसा है कि आप कोई भी गांव में चले जाएं, सिर्फ गुजरात के नहीं, MP के, राजस्थान, कोई भी गांव में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या जो है महिलाएं कहेंगी पानी की है।
0: बिल्कुल।
1: कि वो मीलों दूर जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो वहां पर हमको ये लगता था कि सालों से अपनी उनकी खुद की जो व्यवस्थाएं थी पानी की, वो पानी की व्यवस्थाओं को बरकरार रखने के लिए उनको सरकार में आवाज उनकी बुलंद होनी चाहिए। और तो इसमें महिलाओं की अगुवाई बहुत ही अहम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम सिर्फ महिलाओं का है, हम मानते हैं कि बराबरी का काम है।
0: बिल्कुल।
1: पानी का तो ये एक है। दूसरा ये है कि बहुत बड़ी हिंसा, हम जानते हैं कि आज शहर हो, गांव है, कहीं पर भी, तो हिंसा घर में होती है, इंस्टीट्यूशंस में होती है, बाहर होती है, समाज में होती है। तो इसके सामने आवाज उठाना कि ये गलत है, हम ये नहीं साइन करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और उसके लिए उसके ढांचे खड़े करना, उसके लिए तैयारी करना, वो समझना क्या कायदे हैं, क्या कानून है, किसका वो लोग उपयोग कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्व का है महिलाओं की अगुवाई में और महिलाओं को तैयार होने में।
0: बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा। जैसा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमारी बहनों को बताई है, यही अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्रामीण स्तर पर महिलाएं किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सकती हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए?
1: ऐसा है कि आप अगर कोई भी ग्रामीण विस्तार में चले जाएं और महिलाओं से ये पूछे या किसी से पूछे तो आपको दो चार चीजें तो ऐसी मिल ही जाएंगी कि जहाँ पर वो कहेंगे कि अच्छा पहले हम ऐसा करते थे तो इसके ऊपर हम आत्मनिर्भर थे, अब वो व्यवस्थाएं टूट गई है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं कि भाई पहले जो थे पेड़ पौधे ये सब बहुत हुआ करते थे, तो फल निकालना, उसमें फल को बेचना, ये या तो कुछ ऐसी जमीन, जैसे हम लोग ने काम उत्थान ने शुरू किया तो वो एकदम से खारी जमीन पर काम शुरू किया था, जहाँ पर पीलू का नाम का एक वो फ्रूट होता है जिसको यहाँ पे जार बोलते हैं, तो वो उनको बेच के वो लोग का यानी उनको अच्छी आमदनी मिलती थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, ये उसकी पूरी कटाई हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि महिला कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है, तो हमें ये लगता है कि वहीं पर अपने संसाधन जो है, पानी हो, जमीन हो, पेड़ पौधे, और दूसरी आज के हिसाब से जो आवश्यक स्किल्स हैं, जो जानकारी है, जो कुशलता है, तो वो अगर उनमें बढ़ाई जाए तो बहुत सारे ऐसे हुनर है जो वहाँ पे लाए जा सकते हैं और महिलाएं और अपने परिवार आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया है कि किस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं, यहीं अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सी बार महिलाएं आत्मनिर्भर होकर हम देखते हैं कि घर से बाहर निकलकर काम करने की कोशिश करती है, तो उनके घर परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करें?
1: सीधी बात है कि अगर ये है कि जैसे ये होता है कि एक पुरुष बाहर निकलता है और जाता है तो पूरा परिवार और समाज ये समझता है और वो मानता है कि वो जब आए तो उसको पानी दो, उसको चाय दो, उसके लिए खाना बनाओ वगैरह वगैरह। तो बात ये है कि अगर एक महिला बाहर काम करती है या घर में भी काम करती है, क्योंकि वो घर में भी काम करती है तो इतने पैसे बचते हैं क्योंकि कोई औरों को देने के बजाय, तो वो अगर जब वो करती है तो उसके लिए ये एक संवेदनशीलता परिवार में होनी ही चाहिए। और ये जो है संवेदनशीलता, ये जो महिलाएं हैं वो खुद भी वो समझा सकती है, वो ला सकती है, और वो लाने के लिए वो लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है, पर अच्छी तरह से अपनी बात को, अपने अधिकारों को, अपनी के भाई मैं भी एक इंसान हूँ, ये जो बात है वो अपने परिवार के सामने वो रखें, संवेदनशीलता खड़ी करें, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सपोर्ट उसको जो है महिला को वो उस तरह से आ सकता है।
0: बिल्कुल
1: मुश्किल है, आसान नहीं है।
0: बिल्कुल मैम आपने सही कहा, जैसा कि मैम आपने कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हमारी महिलाओं को बताई हैं, यही मैम आप भी एक महिला हैं तो आपके बारे में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जहाँ पर आप बहुत ज्यादा परेशान हुए, हताश हुए, लेकिन आप वहाँ से बाहर निकले। जो चीज आप हमें बताएंगे वो हमारी महिलाओं के लिए रहेगा कि उनके जीवन में भी अगर कभी कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो वो उससे कैसे लड़ सकती हैं।
1: ऐसा था कि मैं 1998 में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और तब मैं जा रही थी अहमदाबाद काम के बाद, हमारा वहाँ पर एक मीटिंग था दाहोद में
0: जी जी।
1: उसके बाद और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी, मैं बिल्कुल व्हीलचेयर पर आ गई थी
0: जी जी।
1: और वो एक बहुत बड़ी लंबी एक स्ट्रगल रही, तो तब बहुत लोगों को लगा कि तुमको काम छोड़ देना चाहिए अभी, ये क्योंकि ये संस्था की मैं अगुवाई करती थी, बोले आपको छोड़ देना चाहिए, आपको घर पर बैठ के ये करना, आप एडवाइस करो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा काम जो है, मैं जहाँ गांव है, मेरा जो दिल लगता है, मुझे जो भाता है जो काम, मैं वही काम करूँगी।
0: बिल्कुल।
1: और मैं कैसे भी करूँगी, व्हीलचेयर पर जाके करूँगी कि कैसे भी करूँगी। तो मुझे लगा कि जब ये मैंने तय किया और मैं गांव में जाने लगी, तो ऐसा होता था कि गांव में जब जाऊं और मेरी व्हीलचेयर गाड़ी में से निकले, उसके पहले लोग मुझे गोदी में उठा के चलने लगते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो प्यार मिला मुझे, उससे मेरी और भी ख्वाहिश और मेरी खुद की तमन्नाएं और या तो मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
0: बिल्कुल मैम आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं जैसा कि आपने आपकी जो ये व्यथा बताई है उससे हम ये सभी समझ सकते हैं कि बहुत से लोग हार मानकर वाकई में घर बैठ जाते और वो अपनी जॉब छोड़ देते, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आज अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करने का पूरा नियंत्रण जो है एक उसी इंसान में होता है जो उसे करना चाहता है। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो ये संदेश दूंगी कि आकाश जो है, आसमान जो है, वो उसकी ऊंचाई और उसकी जो विशालता है वो इतनी बड़ी है, इसी तरह से जीवन में करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं
0: जी जी।
1: हमें अंदर से एक निडरता चाहिए और हमें तमन्ना चाहिए
0: बिल्कुल
1: आगे जाने के लिए, और वो जाना ही चाहिए सबको।
0: बिल्कुल मैम आपने बहुत सही कहा, तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहेंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद आपको।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे अतिथि जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम उनके जीवन से रूबरू हो पाए, साथ ही उनके कार्य क्षेत्र में किस तरीके से वे कार्य कर रही हैं उसको भी हमने जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org, radio@vakthara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितली शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: माटी में जन्मी हूँ अनी माटी तकीस जाने जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया बीज बोया मैं पशु न बहाई वो विश्रम करू तो पसे बाप दादा ने जन्म आते मारो अधिकार केम नती। सूरी जन्म तकीस हकदार है। कानून ने आ बात मानी है ना पन्या पूटे एनो हक को ले सके ना रिवाज अना सच में बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
3: अहिंसा का पुजारी सत्य की राह दिखाने वाला ईमानदारी का पाठ पढ़ा गया वो बापू लाठी वाला।
4: हरे रामा रामा रामा हरे हरे कृष्ण

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि श्रोता साथियों, पिछले रविवार को सबके गांधी सांप्रदायिक सौहार्द प्रकरण के बारे में हमने बात की थी। अगर इसी बातचीत को अंजलि जी आगे हम बढ़ाएं, तो साथियों 1922 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।
1: बिल्कुल,
0: संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक के गांव में लोगों के शांत समूह पर पुलिस के हमले से समूह बिफर उठा। पुलिस ने गोलीबारी भी की, पर उनके पास कारतूस खत्म हो गए साथियों।
1: जी जी।
0: अतः पुलिस वाले भागकर थाने में जा घुसे और अंदर उन्होंने दरवाजे भी बंद कर लिए। वहीं अंजलि जी, उत्तेजित समूहों ने थाने में भी आग लगा दी। श्रोता साथियों, वहीं की वहीं 21 पुलिसमैन और एक अफसर घायल हो गए। गांधी जी ने जब ये समाचार अखबार में पढ़ा तो तत्काल उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और 5 दिनों का उपवास किया। पूरे जोश में चलने वाला आंदोलन यूं स्थगित रखे जाने से छोटे बड़े बहुत सारे कार्यकर्ता भाग गए। देश में फैली इस निराशा के वातावरण को देखकर साथियों, सरकार ने गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने गांधी जी के 3 पुराने लेखों के आधार पर उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। गांधी जी ने कोर्ट में अंजलि जी इन आरोपों को स्वीकार करके सरकार की प्रजाद्रोही नीति को ललकारा। उन्होंने कहा कि इन लेखों के अलावा उन्होंने ऐसे कई दूसरे लेख और भी लिखे थे।
1: बिल्कुल,
0: और सरकार की नीति यदि ऐसे ही चालू रहेगी तो भविष्य में भी वे ऐसे ही लेख लिखते रहेंगे।
1: जी जी।
0: साथियों, न्यायाधीश को संबोधित करते हुए गांधी जी ने यह भी कहा कि उनके पास यही विकल्प रह जाता है, मुझे सख्त से सख्त सजा सुना दी जाए। न्यायाधीश मिस्टर ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ मिस्टर ब्रूमफील्ड ने यह भी कहा था कि परिस्थितियां बदल जाने पर यदि सरकार उन्हें पहले छोड़ देगी तो मुझसे अधिक खुशी दूसरे किसी को नहीं होगी।
1: जी हाँ, बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी ओर महायुद्ध के पश्चात तुर्की में कमाल अतातुर्क नामक एक भले सत्ताधारी सत्ता में आए थे। उन्होंने वहाँ के खलीफा की सत्ता को ही नगण्य कर दिया। इसलिए भारत के मुसलमानों के लिए अंग्रेज सरकार के प्रति विरोध दर्शाने का खास प्रयोजन नहीं रहा।
0: बिल्कुल,
1: इस तरह खिलाफत आंदोलन मंद पड़ गया। श्रोता साथियों, जब जब भी सरकार के विरुद्ध आंदोलन मंद पड़ते तब तब कोमवादी तत्व सिर उठाते। फिर हुल्लड़ बढ़ जाने पर सरकार भी इसका सीधा या टेढ़ा लाभ लेती हुई यह सिद्ध करने का प्रयास करती कि देश में एकता न हो तो स्वराज के लिए वे किस तरह अधिकारी माने जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि इस देश में विगत 12-13 सौ वर्षों में अनेक बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराहटे हुई है। ध्यान लाने योग्य बात यह है कि पहले कभी भी इन टकराहटों ने आज के अर्थ में सांप्रदायिक रूप धारण नहीं किया था।
0: बिल्कुल,
1: दो संप्रदाय मात्र धार्मिक कारणों से नहीं टकराए अथवा किसी संप्रदाय के एक व्यक्ति या समूह का बदला दूसरे स्थान पर या दूसरे समय में पूरे संप्रदाय से यानी कि उस संप्रदाय के अन्य सदस्यों से नहीं लिया जाता था। टकराहटे राजनीतिक या आर्थिक कारणों से होती, उनमें दोनों संप्रदायों के लोग बेशक होते पर बहुधा लड़ने वाले दोनों पक्षों में दोनों कौमों के लोग मिल जाते।
0: बिल्कुल,
1: सांप्रदायिक ढंग से दंगे तो हमारे देश को अंग्रेज सरकार द्वारा मिली खास विरासत है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अंग्रेजों ने कौमी भेदभाव फैलाने में हमारी सामाजिक या आर्थिक कमजोरी या मन स्थितियों का बहुत लाभ लिया। हिंदुओं के जातिवाद और छुआछूत के कारण धर्मांतर किए हुए लोगों के दिलों में स्वाभाविक क्रोध या जुनून रहता।
0: बिल्कुल,
1: 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए कौमी दंगों में बहुत बड़ी संख्या में गोहत्या या मस्जिद के सामने नगारे बजाना बहुत कारण बनते। किसी ने कोई गलत काम किया हो तो इसके बजाय उसके धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति या मनुष्य से बदला लिया जाना कौमी दंगों का निमित्त बन जाता था। ऐसा एक दंगा व्यय सीमा प्रांत के कोहाट शहर में हुआ। कांग्रेस ने इसकी जांच करने के लिए गांधी जी और मौलाना शौकत अली की एक समिति गठित की। अंग्रेज सरकार ने इसी समिति को कोहाट जाने से मना कर दिया। कोहाट दंगों के शिकार लोगों को रावलपिंडी बुलाकर उनसे बात करके इस समिति ने सत्य खोज निकालने का प्रयास किया। गांधी जी ने एक एक गवाह की बहुत बारीकी से तहकीकात की। यह जांच चल रही थी उसी दरमियान उन्होंने देखा कि मौलाना साहब मुसलमानों के दोषों को ढकने के प्रयत्न करते थे। जांच समिति के दोनों सदस्य के निष्कर्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग आए। दोनों के अलग अलग विवरण प्रकाशित हुए, इससे मतभेद बढ़ गया जो बाद में कभी शांत ही नहीं हुआ।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों, इससे पूर्व 1924 में कौमी एकता के लिए गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में ही रहते हुए 21 दिनों के उपवास किए थे। उपवास के दरमियान अंजलि जी, दिल्ली में देश के नेताओं की एक परिषद भी बनी थी।
1: बिल्कुल,
0: उसमें कौमी दंगों को होने से रोकने और कौमी परिस्थिति को सुधारने के लिए सर्वसम्मति से कुछ आचार संहिताएं सोची गई थी, परंतु श्रोता साथियों, दुर्भाग्यवश उसका क्रियान्वयन ज्यादा समय तक नहीं हो सका था। वही मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रीय विचार के मुस्लिम नेता थे। उनको संसदीय पद्धति पर इतना विश्वास था कि वे किसी भी तरह का गैर संसदीय पद्धति वाला कदम उठाने को तैयार नहीं थे। वे असहयोग को गैर संसदीय मार्ग मानते थे। वहीं सन 1919 में जब कांग्रेस ने असहयोग का अपना कार्यक्रम बनाया, तब जिन्ना ने उसका आखिरी तक विरोध किया। उम्र में जिन्ना गांधी जी से छोटे थे, पर भारत की राजनीति में उन्होंने गांधी जी से पहले ही प्रवेश कर लिया था। कई लोगों का ऐसा अभिप्राय था अंजलि जी कि गांधी जी के कांग्रेस प्रवेश और असहयोग आंदोलन को मिले जबरदस्त समर्थन के कारण जिन्ना की कांग्रेस की अगुवाई छिन गई थी।
1: बिल्कुल,
0: उस समय जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे। श्रोता साथियों, लीग के सदस्य बनने से पहले उन्होंने इतना स्पष्ट कर लिया था कि उससे देश की स्वतंत्रता संबंधी उनकी वफादारी में जरा सी भी बाधा नहीं आनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: कांग्रेस के द्वारा असहयोग का मार्ग स्वीकार करने के बाद और कांग्रेस में उनका प्रभाव घटने के बाद जिन्ना ने अपने ढंग से कांग्रेस का सीधे विरोध किए बिना ही ऐसे प्रयास किए थे कि भारत की राजनीति में मुस्लिमों को अधिक अधिकार मिले।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने मुस्लिमों के लिए 14 मुद्दे की मांगे तैयार की थी, पर उसको कांग्रेस या अन्य पक्षों के गले उतारने में वे सफल नहीं रहे थे।
1: जी हाँ,
0: उसके बाद श्रोता साथियों, वे इंग्लैंड चले गए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल।
2: नफरत

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि कशिश, गीत से पहले हमने जाना सबके गांधी सांप्रदायिक सौहार्द में ढेर सारी बातों को, यहीं आगे बात करें

0: तो श्रोता साथियों, वहाँ उन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपने व्यवसाय में मन लगाया था और उसमें ठीक ठाक कमाई भी की थी। अंग्रेजों के पास कांग्रेस का सामना करने के लिए दूसरे मुस्लिम प्रतिनिधि थे और एक नया ही समर्थ विरोधी स्तर निकालने वाले डॉक्टर अंबेडकर उनको मिल गए थे।
1: बिल्कुल।
0: तदुपरांत एकाध वर्ष पश्चात हिंदुस्तान से यूरोप की सैर करने आए लियाकत अली खान नामक एक अमीर खानदान के पुत्र इंग्लैंड में जिन्ना से मिले थे। लियाकत अली खान जिन्ना को यह समझाने में सफल रहे थे कशिश कि भारत की राजनीति में जिन्ना के नेतृत्व का भले ही स्वागत न हुआ हो, पर देश की मुस्लिम राजनीति में उनका बहुत गर्म जोश से स्वागत होगा। प्रतिष्ठा में जिन्ना से आगे समझे जाने वाले अली बंधु अब रहे नहीं थे। दूसरे राष्ट्रीय मुसलमानों की मुसलमानों में बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी। जिन्ना ही हिंदुस्तान की एक चौथाई जनता का सही नेतृत्व करने के लिए हर तरह से योग्य थे। जिन्ना ने लियाकत अली खान को देश लौट कर संपूर्ण परिस्थिति का अंदाजा लगाने के बाद उन्हें सूचित करने को कहा। लियाकत अली ने भारत जाकर जिन्ना को भरोसा दिलाने योग्य संदेश भेजा था। जब जिन्ना को पक्का विश्वास हो गया था तो वे इंग्लैंड का मकान बेचकर मुंबई आए। उसके उपरांत थोड़े अरसे में ही मुस्लिम लीग ने जिन्ना को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। उसके बाद भी एक डेढ़ वर्ष तक जिन्ना ने कांग्रेस का सीधा सामना करना पड़े ऐसी कोई कार्रवाई हाथ में नहीं ली।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों 1937 के चुनाव के समय मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में बहुमत नहीं मिला। मुस्लिम बहुल प्रदेशों में लीग को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, पर जहां मुस्लिम अल्पसंख्या में थे उन प्रांतों की मुस्लिम सीटों में से लीग ने अच्छी खासी सीटें कब्जे में कर ली थी।
0: बिल्कुल।
1: चुनाव संबंधित लीग और कांग्रेस की सरकारी अधिघोषणा में बहुत साम्य था अंजलि जी। संयुक्त प्रांतों में तो जहां एक पार्टी का उम्मीदवार खड़ा न हुआ हो, वहां उन्होंने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को खुला समर्थन दिया था।
0: जी जी।
1: साथ ही श्रोता साथियों, ऐसा भी हुआ था कि वहां एक ऐसी उपेक्षा खड़ी हो गई थी कि यदि कांग्रेस सरकार बनाएगी तो उसमें लीग विधानसभा सदस्यों को भी स्थान देगी। कांग्रेस को संयुक्त प्रांतों में अच्छा खासा बहुमत मिल गया। श्रोता साथियों, इन्होंने 3 मंत्री लेने की बात की थी, पर बाद में 1 लेने की तैयारी दिखाई।
0: बिल्कुल।
1: इससे संयुक्त प्रांत की मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के बहुत नजदीक आ रही थी वो कांग्रेस से विमुख हो गई। वहीं श्रोता साथियों, मुंबई में कांग्रेस को अच्छा बहुमत नहीं मिला था। वहां लीग को कहा गया कि मिनिस्ट्री में आना हो तो कांग्रेस की शर्त पर हस्ताक्षर करके आ जाओ।
0: बिल्कुल कशिश, मंत्रिमंडल के गठन से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच खुल दरार पड़ी। दिनों दिन वह दरार चौड़ी होती गई। उनमें दोनों पक्षों की चर्चा परिचर्चा में व्यक्त होने वाला अहंकार और तिरस्कार सामने आने लगा था। नेताओं की महत्वाकांक्षा और साथ ही अंग्रेज सरकार की कदम कदम पर बाधाएं तो थी ही। इन सब के परिणाम स्वरूप जिन्ना के मन में यह ग्रंथि तो बन गई थी कि कांग्रेस अपने बहुमत के बल से लीग को सत्ता पर कभी बैठने नहीं देगी।
1: बिल्कुल।
0: इसके राज्य में मुस्लिम कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तब से जिन्ना ने कांग्रेस से लड़ने की ठान ली। अंग्रेज सरकार को स्वतंत्रता की मांग करने वाले और बड़े बहुमत का समर्थन करने वाले पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य कोई ऐसा साधन तो चाहिए ही था। मुस्लिम लीग के रूप में वह उनको मिल गया। इन वर्षों के दरमियान कट्टर हिंदूवादियों की भारतीय राजनीति में दाल गल नहीं रही थी। जिन्ना ऐसे नेता थे जो अपनी चर्चा परिचर्चा में अपने पक्ष में अधिक से अधिक को जोड़ते जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: शुरुआत में उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने चर्चा की थी। उनके वर्षों बाद 1944 में राजा जी और गांधी जी ने व्यक्तिगत हैसियत से लंबी मंत्रणाएं की थी। उनमें किसी को वांछित सफलता मिली नहीं थी। 1939 तक जिन्ना का दावा ऐसा था कि मुस्लिम लीग ही भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें रही सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर, ये बातें अगले रविवार को ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति।
0: नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थे है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर बोले में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ये उन्होंने रक्षा करे है। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ू जीवन है। होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने अपनी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ अपनी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वाग धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम पर। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार हम और हमारा संविधान में हमने जाना था संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता के बारे में।
1: जी हाँ।
0: और आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत होने वाली है लोकतंत्र और संवैधानिक बुद्धिमत्ता के बारे में।
1: बिल्कुल अंजलि, अगर संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता के गुण के बारे में बात करें तो संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह हर व्यक्ति, हर बच्चे, युवा और लैंगिक पहचान से जुड़े व्यक्ति में एक रूप में पाई जाती है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, लेकिन समाज और सरकार इसे निष्क्रिय बनाए रखते हैं। यदि संवैधानिक मूल्यों को सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो मजहबी, जातीय, नस्लीय आधारों पर होने वाले टकरावों को समाप्त किया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: हर व्यक्ति को ये छूट होनी चाहिए कि वह अपना विचार सामने रख सके। सभी के विचारों को सुनना और समझना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता का सूचक है।
0: जी बिल्कुल।
1: लोकतंत्र के मूल्यों को अपने जीवन के व्यवहार का आधार बनाना भी संवैधानिक बुद्धिमत्ता का ही द्योतक है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें लोकतंत्र और संवैधानिक बुद्धिमत्ता की तो साथियों, लोकतंत्र से आशय 5 वर्ष में एक बार मतदान कर देना भर नहीं है, बल्कि हर मतदाता को अपना मत डालने से पहले अच्छी तरीके से ये सोच विचार करना चाहिए कि कौन सा राजनीतिक दल, विचार और उम्मीदवार समाज की बेहतरी के लिए काम करने में सक्षम लग रहा है। संवैधानिक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि भारत का नागरिक जाति, नस्ल, संप्रदाय, धर्म और अनैतिक आचरण के आधार पर गांव, प्रदेश और देश की सरकार का चुनाव नहीं करेगा। संवैधानिक बुद्धिमत्ता लोगों में वह विवेक उत्पन्न करेगी जिससे वे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कामकाज की समीक्षा कर पाएंगे। अगर सभी न्यायपालिका का सरकार या किसी राजनीतिक, धार्मिक विचारधारा से गठजोड़ होता दिखाई दे तो लोग तत्काल उस गठजोड़ का संवैधानिक प्रतिरोध कर सकेंगे। हम कह सकते हैं कि अगर शिक्षा, भोजन, सूचना, समानता या सामाजिक संरक्षण की नीतियाँ कानून बने और लागू हुई तो इसके पीछे मूल शक्ति जनता की ही है। यदि ऐसी नीतियाँ बनी कि जंगलों का विनाश किया जाए, जंगलों से आदिवासियों को बेदखल किया जाए, देश की प्राकृतिक संपदा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया जाए, भीड़ की हिंसा और सांप्रदायिक दंगे हो तो इसके पीछे भी जनता की ही शक्ति होती है। संविधान के द्वारा उन्हें दी गई शक्ति के बारे में जानना और इसके महत्व को महसूस करना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है।
1: बिल्कुल अंजलि। और जब भी प्रतिनिधि को चुनने का वक्त आए तब नागरिक ये पड़ताल कर पाए कि उम्मीदवार की व्यवस्था में हित क्या है। ये कौशल भी संवैधानिक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। ये समझ और विश्वास बनना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है कि भारत की व्यवस्था का संचालन बाइबिल, कुरान, गीता, चाणक्य नीति, रामायण या महाभारत की बातों के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर होगा।
0: जी हाँ।
1: संवैधानिक मूल्यों के पालन की जिम्मेदारी केवल सरकारों या लोक सेवकों तक सीमित नहीं है श्रोताओं। संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता के विकास से यह समझ बन पाएगी कि हर भारतीय को अपने निजी जीवन में, अपनी निजी और पेशेवर भूमिकाओं में और अपने सामाजिक व्यवहारों में भी समता, न्याय, बंधुता, गरिमा और स्वतंत्रता के मूल्यों को अपनाना ही होगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें मूल्य आधारित नजरिया क्या है इसको लेकर तो साथियों, सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लक्ष्य से संबंधित नजरिए और विचार अलग अलग हो सकते हैं। इन आधारों पर बनी योजनाओं और कानूनों में भी भिन्नता हो सकती है। नीतियों, कानूनों और विकास के प्रति

0: संस्थाओं और राजनीतिक दलों का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल्यों को नहीं बदला जा सकता। मूल्यों का अपना अर्थ है यह मानना कि सामाजिक आर्थिक बदलाव के केंद्र में न्याय, समता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, बंधुत्वता, गरिमा और स्वतंत्रता जैसे मूल्य होने ही चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर मूल्यों को केंद्र में रखा जाएगा तो नीतियाँ, व्यवस्था और नेतृत्व के बदले से समाज तथा लोगों पर विध्वंसकारी असर नहीं पड़ेगा।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अंजलि। जीवन मूल्य और उनके विरुद्धाभास के बारे में अगर हम बात करें,
0: जी हाँ,
1: तो साथियों सामाजिक विकास और बदलाव की पहल में मूल्य आधारित नजरिया अपनाने का पहला मतलब है निजी जीवन के व्यवहार, नीति के कथानक और संस्थागत व्यवस्थाओं के बीच के विरुद्धाभास को समाप्त करना। भारतीय संविधान के उद्देश्य का सामाजिक न्याय के मूल्यों को अपनाए जाने की घोषणा करती है।
0: जी बिल्कुल।
1: साथ ही संवैधानिक मूल्य आधारित नजरिया अपनाने का मतलब ये है कि हम अपने निजी जीवन में भी अन्य लोगों के साथ सामाजिक न्याय का ही भाव रखें और उसी के अनुरूप बर्ताव करें।
0: जी बिल्कुल।
1: हम अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति सजग हैं, लेकिन यह भी सच है कि बच्चों को स्कूल में छुआछूत नहीं करने का पाठ पढ़ाया जाता है।
0: जी हाँ।
1: और घर वापस लौटते ही वे छुआछूत के तमाम उदाहरण अपने आसपास देखते और सीखते हैं। हम शहर में खुशहाल जीवन के सपने की हर बार व्याख्या करते हैं, लेकिन खुशहाल जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाई जाने वाली योजना के केंद्र में बस्तियों को उजाड़े जाने की कार्यवाही होती है। कुछ की खुशहाली के लिए कुछ को उजाड़े जाने का विरोधाभास खत्म करना ही मूल्य आधारित नजरिए का लक्ष्य है।
0: तो जागृति जी, जैसा कि ये हम जान पाए जीवन मूल्य और उनके विरोधाभास के बारे में, आगे हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन विकास और जीवन मूल्य के बारे में, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बात चल रही है। गीत से पहले हमने जाना था मूल्य आधारित नजरिया, जीवन मूल्य और उनके विरोधाभास के बारे में। अगर यहीं आगे बात करें तो श्रोता साथियों, केवल अपने लिए बहुत अच्छा सपना बुन लेना ही जरूरी नहीं है।
1: जी हाँ,
0: जरूरी यह है कि हमारी आंखों के सपने आम लोगों और हमारे साथियों की आंखों के उन सपनों से जुड़ जाएं जिन्हें अदृश्य मान लिया गया है। समता, स्वतंत्रता, सहभागिता, पारदर्शिता, करुणा, प्रेम, बंधुत्व, जवाबदेहिता अलग अलग नहीं है। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं जागृति जी, गुथे हुए मूल्य हैं। इनमें से कोई भी अकेले मौजूद नहीं रह सकता। समता के बिना स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बिना सहभागिता और सहभागिता के बिना बंधुत्व का होना असंभव है।
1: बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों, समानता का मतलब सतह ही नहीं है। संविधान कहता है हम भारत के लोग। उद्देशिका कहती है व्यक्ति को न्याय, गरिमा का अधिकार मिलेगा। 75 साल पहले भी लोगों को पता था कि भारत में सिर्फ औरत और मर्द नहीं रहते, समाज में पारलैंगिक लोग भी हैं तथा तमाम अन्य समुदाय भी हैं। ये संविधान हर लैंगिक पहचान की कद्र करता है।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें प्राकृतिक संसाधन, विकास और जीवन मूल्य की, तो साथियों सरकार और समाज दोनों ही मूल्य विहीन विकास से सहमत है। तभी तो 16 लेन की सड़क का विकास लक्ष्य पाने के लिए पहाड़ काट दिए जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: खेती की जमीन बर्बाद की जाती है और जंगल उजाड़ दिए जाते हैं। समाज के लोग इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हैं। बिजली के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इन परियोजनाओं के लिए 125 करोड़ से ज्यादा लोग, उनकी जमीन, घर और गांव से उजाड़ दिए गए। गांव और समाज के एक बड़े तबके को उजाड़ कर बिजली उत्पादन के कारखाने लगाए जाते हैं और समाज का दूसरा तबका उन बिजली की रोशनी में उत्साह मनाता है। प्राकृतिक संसाधनों को आदमी की संपत्ति मानना बंद करना होगा। हाँ, प्राकृतिक संसाधन समता के मूल्य के आधार पर उपयोग में लाए जा सकते हैं।
1: जी हाँ। इसी के साथ अगर महात्मा गांधी जी के शब्दों के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताएं, जिन्होंने यंग इंडिया में 10 सितंबर 1931 में लिखा था कि मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा जो भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त कर दे और उसे आवश्यकता हो तो पाप करने तक का अधिकार दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी ये महसूस करेंगे कि ये उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता और शराब तथा दूसरी नशीली चीजों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे, क्योंकि शेष सारी दुनिया के साथ संबंध शांति का होगा। यानी न तो हम किसी का शोषण करेंगे और न ही किसी के द्वारा अपना होने देंगे। इसीलिए हमारी सेना छोटी से छोटी होगी, ऐसे सब हितों का जिनका करोड़ों मुक्त लोगों के हितों से कोई विरोध नहीं है। पूरा सम्मान किया जाएगा, फिर वे हित देशी हो या विदेशी। अपने लिए तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि देशी और विदेशी के फर्क से नफरत करता हूँ। ये मेरे सपनों का भारत, इससे भिन्न किसी चीज से मुझे संतोष नहीं होगा।
0: तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अगले रविवार को हमारी मुलाकात होगी भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के साथ में।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अभी कार्यक्रम से विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल
2: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: मारू नाम गिल्ली है ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे कि आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है। तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूधस पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो फसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
5: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
4: कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से नए व्यंजनों की विधि को लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो आज भी कार्यक्रम में हम नए व्यंजनों की विधि को लेकर हाजिर हुए हैं। जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातों को, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि आज भी कार्यक्रम के माध्यम से नए व्यंजनों की विधि को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। आज हमारी जो रेडियो साथी जागृति जी है, वो एक गृहिणी महिला से बातचीत कर रहे हैं कि वे किस तरीके से अपने घर पर स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपने घर परिवार के सभी सदस्यों का दिल जीतती हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में उन्हीं से इन ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे।
1: नमस्ते आरती जी।
2: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए।
1: बस बढ़िया। जैसा कि आपका स्वागत है वागा रेडियो परिवार में, और सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: धन्यवाद, आपने अपने रेडियो स्टेशन पे मुझे बुलाया। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। मैं बेसिकली बिहार से रहने वाली हूँ, बट ब्रॉन ब्रॉटअप मेरा दिल्ली NCR से है, और आफ्टर मैरिज यहाँ हमारी ट्रांसफर हुई है बांसवाड़ा। तो आपके शहर में आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है।
1: जी जी,
2: बस यही है मेरा परिचय।
1: जी, तो जैसा कि आप बहुत ही अच्छी गृहिणी है, यानी कि हाउसवाइफ है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को आज अच्छे अच्छे व्यंजनों के बारे में बताइए कि आप क्या बता सकते हैं जिसकी सामग्री घर पर अच्छे से उपलब्ध हो जाए और हमारी जो बहन है वो घर पर बना सके और अपने परिवार वालों को खुश कर सके।
2: धन्यवाद, आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं यहाँ पे अपने एक डेली के जीवन के आधार एक रहनी होती है कि आपके घर को कैसे दिनचर्या एक समय सारणी के साथ लेके चलती है। मैं आपको एक बेसिक मसालों के साथ और घर में बेसिक चीजें जैसे आलू है, चावल है, कुछ खड़े मसाले हैं, इसके द्वारा एनी टाइम इंस्टेंट आलू दम मटर जीरा पुलाव के बारे में आज बताती हूँ, जो बहुत कम समय में और बहुत ही टेस्टी बनेंगे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि दम आलू के बारे में आज आप बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आप दम आलू में हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, वो सामग्री के बारे में आप हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
2: वैसे कहा जाता है कि बैगन सब्जियों का राजा है, पर बिना आलू के कोई भी सब्जी अधूरी है, चाहे नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ जाए, वेस्ट से नॉर्थ जाए, हर जगह आलू एक मेन इंग्रेडिएंट है। इसके लिए आपके लिए, आपको बिना आलू के आप एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो चलिए, आलू दम के लिए हमें बेसिकली एक मीडियम साइज के आलू मिले तो ठीक है, अदरवाइज आपको छोटे आलू मिलते तो और भी अच्छा है। तो हम पहले क्या करेंगे, मैं तीन जनों के हिसाब से बताती हूँ। अगर तीन जने हैं तो उसमें आप एक पाव आलू ले लीजिए।
1: बिल्कुल,
2: या आपको अगर उस अंदाज से आपको कम या ज्यादा लगता है उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आलू ले सकते हैं। अच्छे से धो के हल्का स्टीम लगाएं। ध्यान है, ये दम आलू के लिए आलू इस तरीके से स्टीम होने चाहिए कि ना तो आलू कच्चे रहे ना वो फटे, एटलीस्ट आपके आलू ना 90% तक, 85-90% तक पके होने चाहिए। के बाद हम उनको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद एक टूथपिक की सहायता से उसके अंदर छोटे छोटे छेद करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: और जब वो एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, जब देखेंगे कि कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के तेल खूब गर्म हो गया, तब उसे हम मध्यम आंच में फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय हल्का सा उसमें हल्दी और नमक उसके अंदर डाल देंगे, जिससे क्या हल्दी एक प्रॉपर कलर देगा और नमक उस आलू के अंदर चला जाएगा, ताकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो सिर्फ नमक ऊपर ही ना रहे, नमक आलू के अंदर तक चला जाए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने ये दम आलू के बारे में बताया कि इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, साथ में आपने इसकी विधि के बारे में बताया, तो एक बार पुनः मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इसे एक बार फिर से बताइए हमारे श्रोता साथियों को कि इसे कैसे बनाया जा सकता है।
2: इसे दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो मैं बॉइल मेथड से आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको आलू को बहुत अच्छे से धोना होगा, उसके अपने आवश्यकता के अनुसार आप आधा किलो एक किलो जैसे आपके घर में लोग हैं उस हिसाब से आप ले, उसे उबाल लें, इस हद तक उबालना कि आपका 85-90% आलू पके होने चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: ये ध्यान रखें कि आलू ओवर बॉइल ना हो, फटे ना आलू। तो ये ऐसे हो जाएगा, उसको ठंडा होने पे आलू को अच्छे से, ध्यान है आलू हल्के गर्म रहेंगे तभी आप छील लें, ताकि बहुत अच्छे से स्मूथली वो छिल जाए। और जैसे थोड़े ठंडे होंगे टूथपिक की सहायता से उसमें छेद कर लेंगे। उसके बाद जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आलू आ जाएंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसे अच्छे से मध्यम लो टू मीडियम, और जब अच्छे से आपको लगे कि वो फ्राई हो चुके, तब हाई फ्लेम में एक बार करके 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में करके उसको निकाल लेंगे। पर ध्यान रहे, जैसे पहले भी बताया कि उसमें हल्दी और हल्का नमक उसको फ्राई करते समय दें, ताकि जो आपका हल्दी से एक अच्छा कलर आएगा सब्जी के अंदर
1: जी।
2: और नमक आलू की गहराई तक जाएगा।
1: बिल्कुल, जैसा कि आरती जी आपने अभी दम आलू के बारे में बताया, यही आप हमारे श्रोता साथियों को इसकी ग्रेवी के बारे में बताइए कि किस तरह से इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, अभी जैसे कि हमने अभी मेन जो है आलू दम में हमने फ्राई कर लिए आलू, उसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान दिया है कि आलू टूटे ना, फ्राई करते समय ये भी देखना होगा कि फ्राई करते समय हम कुछ ज़्यादा ना उसे अलट पलट करें, जिससे हमारे आलू बीच में टूटने की संभावना है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसके बाद जब आलू एकदम नॉर्मल ठंडे हो जाएंगे, आप उसको एक बर्तन में निकाल के अलग से रखें। ग्रेवी बनाने से पहले हमें दो चीज़ का ध्यान रखना होगा
1: जी,
2: कि हमें ग्रेवी कैसी बनानी है। एक हल्की मसालेदार चाहिए ग्रेवी, एक नॉर्मल जैसे डेली उसमें खाते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि आलू दम है, तो आलू दम में थोड़ी ग्रेवी हम डिफरेंट टाइप से बनाएंगे।
1: बिल्कुल,
2: और साथ के साथ हम इसे गार्निश करने के लिए बरिस्ता भी बनाएंगे। तो अभी हम पहले बरिस्ता की तरफ चलते हैं और साथ के साथ हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब बरिस्ता पतले प्याजों को लंबा लंबा काट के डीप फ्राई करके जब हल्के गोल्डन ब्राउन कलर आने लगते हैं तो उसे निकाल लेंगे। साथ के साथ थोड़ा हल्के मोटे प्याज को काट के उसके साथ दो हरी मिर्ची, साथ में दो से तीन टमाटर, अगर देसी टमाटर है तो दो टमाटर बहुत है, अगर आप नॉर्मली जो मोटे टमाटर ले रहे हैं परदेसी जिसे बोलते हैं वो टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तीन से चार भी कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देसी टमाटर आपके थोड़े खट्टे होते हैं। यहाँ पे हमें आलूओं का भी स्वाद पता चलना चाहिए दम में, सिर्फ टमाटरों के खट्टापन से आलू का अपना फ्लेवर ना दब जाए, इसीलिए बैलेंस करते हुए चलेंगे।
1: बिल्कुल,
2: अब इसके साथ हम साथ के साथ अदरक हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भी एक तरफ तैयार करेंगे। अगर ये फ्रेश बनाया है तो बहुत अच्छा है, आप इसे पहले से भी बना के रख सकते हैं। अधिकतर घरों में देखा जाता है कि गृहणियां लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से ही बना के रखते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा इसे एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए फ्रेश इसे बनाएंगे
1: जी।
2: इसी के साथ साथ जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो उसमें थोड़ा सा दो से तीन चम्मच तेल डाल देते हैं और उसमें थोड़ा सा जीरा, साथ में हल्का सा जब ये नॉर्मल जीरा आपका ब्राउन होने के आ जाए तब उसमें थोड़ा सा शाही जीरा, तेज पत्ता, दो काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची डालेंगे। और अगर आपके पास जायत्री या स्टार है फूल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे बहुत ज्यादा ना हो, एक एक लेते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में है तो आप एक दो से तीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ मैं तीन जनों के लिए जैसे कि पहले बताया बना रही तो मैं थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करूंगी, मैं सारी चीजें एक एक करके ले रही हूँ
1: जी।
2: और साथ में एक से दो लौंग के फूल डाल, इसके साथ मध्यम आंच पे, याद रहे यहाँ पे प्याज को पकाने मसाला तैयार करते समय हमें हाई फ्लेम नहीं रखना है, हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना
1: जी।
2: लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हम इसे बनाते हैं, जब देखेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन प्याज हो रहा है तब उसके अंदर हम अपना अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और उसी के अंदर जो हमारे बाकी मसाले जैसे धनिया, जीरा पाउडर, आपका ही इस गरम मसाला बेसिकली मैं प्रीफर करूंगी कि एंड में डालें, पर क्योंकि कुछ लोग साथ की में ही इसे फ्राई करते हैं
1: जी,
2: उसमें कच्चे मसाले भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं सारे जो भी गरम मसाला भी मैं यूज़ करूंगी तो फ्रेश बनाया है, मैं उसे हल्का ड्राई रोस्ट करूंगी।
1: बिल्कुल,
2: तो यहाँ पे धनिया, हल्दी, मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो कि आपकी सब्जी को एक बहुत प्यारा सा कलर देगी, साथ में उसका अपना एक फ्लेवर आएगा। इसके साथ डालते हुए ध्यान रहे जब मसालों में से तेल छूटना शुरू हो जाए तब उसमें हम टमाटर डालेंगे, और टमाटर जैसे बता रखे हैं कि टमाटर चयन करते हुए समय उसकी ब्रीड देखिए, देसी है या परदेसी, परदेसी है तो दो से तीन यूज करिए और देसी है तो दो।
1: बिल्कुल,
2: और वो भी मीडियम साइज के, बहुत ज्यादा ये आपकी क्वांटिटी पे टोटल डिपेंड करता है
1: जी जी।
2: और उसके बाद देखेंगे जब हमारा टमाटर गल गया है तो उसके अंदर हम ना हल्के हाथों से जो हमने फ्राई किए हुए आलू है उन्हें डालेंगे और लो फ्लेम पे दो से तीन बार से चलाएंगे, फिर जिस तरीके की आपको ग्रेवी खानी है उतना उसमें पानी ऐड करेंगे और उसे ढक देंगे
1: जी।
2: और जब ढक देंगे तो हमारा जो फ्लेम है वह आपका मीडियम रहेगा।
1: बिल्कुल,
2: ज्यादा लो करेंगे तो आलू ऑलरेडी बॉयल हो रखे हैं और उसमें फ्राई भी हो रखे हैं तो आपके 95% तक आलू ऑलरेडी पक चुके हैं, तो फ्लेम लो करेंगे तो उनका फटने का भी डर है, इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। जब हम देखेंगे जो आलू के पोर बनाए हुए हैं उसमें छेद स्टिक से किए, आपकी ग्रेवी के अंदर तक डिप हो गई है, तो आप एकदम मध्यम आंच करके उसमें हल्की सी रोस्ट की हुई कश्मीरी मेथी डाल दें, और जब होने पे आ जाए ग्रेवी तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे
1: जी।
2: फिर जब ये हो जाए तो इससे पहले दम की ग्रेवी बनाने से पहले हमने बरिस्ता किया था जो कि आपकी गोल्डन ब्राउन प्याज है, तो आप ये देखेंगे कि आपका ऑलमोस्ट आलू दम हो गया है। तो आप आलू दम को फ्लेम बंद करने से पहले जो आपको गरम मसाला देना है आप दे दीजिए, और उसके बाद उसे बंद कर दीजिए
1: बिल्कुल।
2: फिर 2 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे जो आपके जो आलू हैं उनके अंदर पोर्स तक पूरी ग्रेवी जा चुकी है। वो आलू दम एकदम अच्छा कलर भी दे रहा है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है, और नमक आप देख लीजिएगा कि आपने जो दिया है दोनों ग्रेवी में थोड़ा आपको कम देना होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आलू में दे रखा है, अपने अनुसार आप नमक दे सकते हैं, कम या ज्यादा आप अपने अनुसार दे सकते हैं। जब थोड़ा जब आप उसे सर्व करने जाएंगे आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंस्टेंट भी उसमें एक तड़का दे सकते हैं, बेसिकली दम देने के लिए 2 चम्मच घी लीजिए,

0: जी, और जब सर्व करने अगर आपकी इच्छा तो उसमें आप धनिया पत्ती दें, अदरवाइज आपने उसमें कस्तूरी मेथी का मिश्रण पहले डाल रखा है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ हमारे श्रोताओं के लिए आलू दम
1: बनकर तैयार है। बिल्कुल। तो जैसा कि आरती जी आपने बहुत ही अच्छे से दम आलू के बारे में बताया कि किस तरह से हम घर पर दम आलू बना सकते हैं, तो हम आगे भी आपसे जानना चाहेंगे कि दम आलू के साथ हम किस चीज को खा सकते हैं। राइस खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, ये सारी बातें हम आपसे जरूर करेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मनपसंद गीत कौन सा है जो आप वागड़ रेडियो के माध्यम से सुनना चाहेंगे।
0: धन्यवाद, आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं अपने पसंद और नापसंद आप सबके सामने रखूं। तो मेरे तो बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत पुराने गाने नहीं सुनती हूँ, मिडिल एज के 90s के सुनती हूँ, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि आज आप अपने पसंद का कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो वो मुझे सुनाए, ताकि मेरी भी तरह पुराने गानों को लेके थोड़ा सा याद ताजा हो जाए।
1: जी बिल्कुल।

जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि आरती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने गीत से पहले हमें दम आलू के बारे में बताया था। यही आरती जी, मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ वागर रेडियो परिवार में, और मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगी कि हम

0: दम आलू के साथ क्या खा सकते हैं?
1: ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप उसके साथ क्या खाना पसंद करते हैं
2: जी।
1: अगर आप नॉर्थ से हैं तो आप चावल के साथ इसे ज़्यादा पसंद करेंगे, वाइट राइस हो या जीरा राइस हो या मटर पुलाव हो, या अगर आपको राइस प्रेमी नहीं है तो आप उसको पूरी पराठे या किसी और चीज़ें सादा रोटी के साथ खाना पसंद कर सकते हैं
2: जी।
1: पर यहाँ मैं कहूँगी जैसे दम आलू बनाया है तो इसके साथ मैं यही कहूँगी कि आप एक पुलाव के साथ मटर पुलाव की रेसिपी बताती हूँ
2: जी।
1: तो फटाफट बनने के तैयार हो जाएगी, 5 मिनट लगेंगे उसे तैयार होने में, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहले हम बासमती चावल ले लेंगे, उसे बनाने से 15 मिनट पहले धो के सोख कर लेंगे। साथ ही साथ हम कुकर अपना तैयार करते हैं, आपके ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है कि आप उसे कढ़ाई में बना रहे हैं, ओपन पैन में बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, किसी हांडी में बना रहे
0: जी। बिल्कुल, हमारी सुविधा अनुसार हम
1: किसी भी बर्तन के अंदर से बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा उसमें 2 से 3 चम्मच, ये फिर मैं कहती हूँ कि तेल, नमक, घी, ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को तेल घी ज्यादा का परहेज करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कुछ बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ मीडियम करना चाहते हैं, और कुछ बस इतना ही करना चाहते हैं कि जिससे वो बस एक फ्लेवर ले सके
0: जी जी।
1: तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इन थोड़ा सा ले। यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करूंगी, उसमें जैसे पहले भी मैंने जीरा और शाही जीरा दोनों का इस्तेमाल करते हुए, कुछ मैं काजू के 8 से 10 दाने काजू के लूंगी, 10 से 15 किशमिश के दाने लूंगी, 1 छोटी कटोरी फ्रोजन मटर है वो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही साथ मैं थोड़ा तेज पत्ता, नमक, चीनी, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी बनाती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: तो तेल कह रही हूँ, यहाँ मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप अपने अनुसार रिफाइन तेल, घी, कुछ
0: जो भी
1: कर सकते हैं। घी लिया है, घी में देखा है जीरा थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा होने लग गया है, इसी के साथ थोड़ा सा मैं शाही जीरा दूंगी, 4 से 5 दाने गोल्डन दाने काली मिर्च के, 2 से 3 मैंने यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल किया है, उसके बाद 1 मैंने छोटी इलायची ली है, और उसके साथ ही 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। दालचीनी बेसिकली आपके फ्लेवर के लिए है, क्योंकि ये तेज पत्ते, दालचीनी, ये सब बाद में हम सर्व करने से पहले उसे हटा देते हैं उसके अंदर, जब हमारा तेल गर्म हो चुका है, जीरा भी उसके अंदर गर्म हो चुका है। सारे ये जो मैंने दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, आपको मैंने ये लौंग, काली मिर्च और जो सामग्री दी है, इसे डाल के इसको लो से मीडियम की फ्लेम पे इसके देख लेंगे। जैसे ये ब्राउन होने लग जाएगा तो हम अपने जो चावल सोख किए हुए थे चावल को डाल देंगे
0: जी।
1: 2 से 3 बार उसे हम पलट पलट करेंगे,
0: बिल्कुल
1: उसके अंदर करछी घुमा लेंगे। जब हमारे चावल भुन जाएंगे, इसके साथ ही हम उसमें, अगर जैसे मैंने यहाँ 1 कटोरी चावल का इस्तेमाल किया, मैंने 1 कटोरी चावल दिया, तो उसके अंदर मैं 2 कटोरी पानी दूंगी।
0: बिल्कुल,
1: तो उसके साथ ही जब हम चावल फ्राई करेंगे उसी समय फिर यहाँ पे नमक मैं बताऊंगी कि आप अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि जो कि हम इसे दम आलू के साथ खाना जा रहे हैं तो दम में भी नमक है, इसीलिए हम इसमें चावल के अंदर हल्का नमक देंगे, ऐसा नमक देंगे कि दम आलू के साथ वो बहुत ज्यादा नमकीन भी ना लगे और एकदम फीका भी ना लगे।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही नमक को बैलेंस करने के लिए उसमें हम 1/2 चम्मच चीनी देंगे
0: जी।
1: और जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद हम अपने ड्राई फ्रूट जो है, अगर आपको मखाने पसंद है तो आप इसमें 2-4 दाने मखाने भी आप यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मैंने यहाँ बेसिकली काजू और किशमिश का इस्तेमाल किया हुआ है, ये डाल के उस कुकर बंद करके 1 विसल आने तक वेट करेंगे। जैसे हमारे विसल आ जाएगा हम 5 मिनट बाद खोल के देख लेंगे और हल्के हाथों से चावल को अलट पलट कर देंगे ताकि जो हमारे चावल हो स्टिकी ना हो
0: जी।
1: और उसके साथ ही जो बचा हुआ बरिस्ता है हमारा, जो हमने आलू दम बनाने से पहले ही बना लिया था, उसको भी सर पुलाव के ऊपर से डाल देंगे। और उसके साथ एक प्यारा सा, अगर आप रायता प्रेमी हैं तो आप रायता बना सकते हैं, आलू इसका बूंदी का बनाए या प्याज टमाटर का बनाए या खीरे का रायता बना सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। या अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं स्किप करिए, साथ ही साथ आप आलू दम के साथ जीरा मटर पुलाव का
0: आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आरती जी आज आपने हमारे श्रोता साथियों को बहुत ही अच्छी रेसिपी के बारे में बताया, दम आलू के बारे में बताया, मटर पुलाव के बारे में बताया, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये शुभ अवसर दिया, जहाँ आप लोगों के माध्यम से मैंने अपनी आवाज़ हमारे प्यारे व्यूअर्स को बताई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप एक बार ज़रूर मुझे बताएं, जागृति जी को बताएं। थैंक यू,
0: धन्यवाद।
2: जैसा कि श्रोता साथियों, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रेडियो साथी हैं जागृति जी, वो एक गृहिणी महिला से जान रही हैं कि किस तरीके से हम घर पर ही अलग अलग तरीके से व्यंजन बना सकते हैं और अपने घर वालों का जो पोषण है वो भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सी बार हमें बहुत ही अलग अलग चीजें खाने का मन करता है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम घर पर बनाकर खाएं तो बाजार की चीजों से हम दूर रह सकते हैं। आशा करती हूँ कि जो व्यंजन की विधि हमने आपको बताई है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं कार्यक्रम का पता आपको बताना चाहूंगी, ताकि आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नए नए व्यंजनों की विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज तकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।